तो अभी मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी जमा हो गई हैं बातें, लेकिन आपने मुझे कुछ बतानी है। और जी जो मैं सवाल करूंगी, मेरा आज का भी यही सेगमेंट है कि मैं जो सवाल करूंगी आपने सपने मेरे जवाब देने के साथ साथ अपने पसंद का एक सॉन्ग भी साथ में लिख के भेजना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई अगर आपका जवाब ठीक होगा तो अगर मैं आपका सॉन्ग प्ले कर दूंगी तो इस तरीके से आपको भी पता चल जाएगा कि हमारा जवाब ठीक था, इट्स मीन हमारा सॉन्ग प्ले हुआ। ओके, और अगर आपका सॉन्ग प्ले ना हुआ तो आप समझ जाएगा कि आपने जवाब बोला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने जवाब नहीं देना, आपने अपने पसंदीदा सॉन्ग के नाम के साथ मेरे सवाल का जवाब आपने कॉमेंट करके मुझे बताना है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ आप लोग इंतजार और करें मुझे ऐसे में ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग कौन कौन नींद से उठ गए हैं, कौन कौन मेरे साथ मौजूद है, ताकि मैं आज का अपना सवाल आप लोगों को बता सकूँ।

सबसे पहले यहाँ पर सुन लेते हैं, अभी हम एक आजिम अजहर का एक सॉन्ग है तो जी वो सुन लेते हैं, उसके बाद ही करेंगे अपने सुबह का आगाज। अच्छा था हम सुनते थे फायदा लेकिन आवाज में एक अपने दिन का आगाज करते थे, लेकिन आज हम करते हैं आसिम अजहर की आवाज में अपने दिन का आगाज। जी कर दिया है मैंने प्ले और उसको सुनते हैं साथ में मिलकर।

यहाँ पर देख लेते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है. हमारे साथ मौजूद हैं, हमें SMS करते हैं, SMS हमें करते हैं, सकर के लिए बोलते हैं. कराची से मसरूर अहमद आरजे सना जी, अस्सलाम वालेकुम. कैसी हो आरजे सना जी? काफी दिन हो गए हैं आपकी खूबसूरत आवाज सुनने को नहीं मिली.

ऐसे ही आप मेरे साथ रहा करें, हर संडे को आपको मेरी आवाज़ सुनने को मिला करेगी, और हर संडे मेरा और आपका साथ रहता है पूरे पूरे दो घंटे के लिए, सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। तो आज भी ऐसे ही दो घंटे रहने वाले हम लोग साथ। अच्छा जी, मैं अपना सवाल आपको बताने लगी हूँ, आप सबको जो मेरा सवाल है, सवाल मेरा ये है, फिर आपने उसको जवाब मुझे देना है टाइम से पहले। तो मैं आपको बताऊं कि जो मेरे सवाल मेरे ये है कि देखें, अमजद और असलम दो दोस्त हैं। एक दिन अमजद की मुर्गी असलम के घर पे चली गई और वहां पर जाकर उसने अंडा दे दिया। तो अब ये बताएं कि अंडा किसका हुआ। तो जी ये आपने कमेंट करके बताना है, और इस कमेंट के जवाब के साथ आपने मुझे अपने पसंदीदा सवाल पसंदीदा सॉन्ग भी बताना है। अगर आपका सवाल बिल्कुल ठीक होगा जवाब आपका, तो मैं वो सॉन्ग प्ले करूंगी, तो आप समझ जाएंगे, और लास्ट में भी अपना राइट आंसर वैसे ही बताती हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। तो जी आपने परेशान नहीं होना सबसे पहले, और थोड़ा सा दिमाग चलाना है और उसका जवाब मुझे देना है। तो सवाल अपना रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को। जी मेरा सवाल ये है कि आपने मुझे बताना है, अमजद और असलम दो दोस्त हैं। एक दिन अमजद की मुर्गी असलम के घर चली जाती है और वहां पर जाके वो अंडा दे देती है। तो अब ये बताना है आपने कि ये अंडा किसका हुआ। तो आपने कॉमेंट करके मुझे बताना है अपने एक पसंदीदा सॉन्ग के नाम के साथ।

अच्छा जी, देख लेते हैं फेसबुक पे हमें ज्वाइन करते हैं. अब्दुल रजाक कहते हैं माय फेवरेट आरजे सना खान, और आपकी आवाज बहुत प्यारी है. आप आपने क्या लिखा है, मुझे नहीं समझ आ रहा. अच्छा आपका प्रोग्राम ओके बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है बहन सना. ओके जी, थैंक यू सो मच. अब्दुल रजाक कैसे हैं आप, और बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ज्वाइन किया है. ऐसे ही आपने मेरे सवाल के जवाब मुझे देख के बताना है कि आप मेरे साथ मौजूद हैं. और इसके अलावा आशिक अली जलवानी हमारे साथ मौजूद हैं खुशी का इजहार करते हुए. थैंक यू सो मच अब्दुल आशिक अली जलवानी. अब्दुल रजाक मुझे बताते हैं कि मैं मोहम्मद खान कंबार, वफा जमाल कंबार, मुश्ताक कंबार, हॉलीवुड स्टाफ से शो सुन रहे हैं. नाइस शो, थैंक यू सो मच. और कहते हैं प्लीज प्ले सॉन्ग रंग तेरा ऐसा चढ़ा कि सारे रंगों पे भारी है. जी जरूर प्ले करेंगे. आप मेरे सवाल का जवाब मुझे बता दें, आपका ये सॉन्ग मेरे पास आ गया है, जवाब आप मुझे दे दें. जवाब आपका ठीक होगा आपका सॉन्ग प्ले हो जाएगा जरूर आज के शो में. तो आपने जल्दी से करना है, मुझे जवाब देना है, टाइम नहीं लगाना, क्योंकि अगर 12 बजे के बाद आप लोग मुझे जवाब देते हैं तो बहुत सारे सॉन्ग मेरे पास जमा हो जाते हैं, मुझे प्ले करने होते हैं, टाइम कम हो जाता है. अभी हमारे पूरा डेढ़ घंटा मौजूद है, तो आपने अभी मुझे सवाल का जवाब देना है ताकि मैं आपका सॉन्ग आपको पसंद का प्ले कर सकूं. सबसे पहले आपका सॉन्ग प्ले हो जाएगा अगर आप मुझे टाइमली जवाब दे देंगे. तो देखते हैं आज कौन अपने पसंद का सॉन्ग चलवाना चाहेगा सही जवाब देकर. सवाल मेरा ये था, अगर आपने सवाल नहीं सुना तो सवाल मैं अपना रिपीट कर देती हूँ आप लोगों से, फिर उसके बाद हम जाएंगे छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ. जी मेरा सवाल ये है कि अमजद और असलम दो दोस्त हैं. एक दिन अमजद की मुर्गी असलम के घर चले जाती है और वहां पर जाके वो अंडा दे देती है. तो आपने जस्ट ये बताना है कि ये अंडा किसका हुआ. जो ये राइट आंसर दे देगा अपने सवाल का, मेरे सवाल का जवाब दे देगा राइट, और पसंदीदा सॉन्ग भी बताएंगे.

0: Sakhar FM.
1: It's time to commercial break.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहां वहां जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जी वेलकम बैक वंस अगेन. और यहाँ पर सुन लिया है हमने एक ब्रेक में एक और सॉन्ग मजे मजे का. तो जी देखते हैं अभी हमारे साथ कौन मौजूद है. हमारे साथ मौजूद होने का मकसद ये होता है कि मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन मेरे साथ मौजूद है और किसने मुझे जवाब अभी तक दिया और

मेरा जो सवाल था, सवाल यकीनन आप लोगों ने सवाल ये था कि यार आपने मुझे बताना था. अमजद और असलम दो दोस्त हैं और अमजद की मुर्गी एक दिन असलम के घर चले जाती है और वहां पर जाके अंडा दे देती है. तो आपने जस्ट ये बताना कि अंडा किसका हुआ. तो आपने मुझे बताना और बताने के साथ साथ आपने अपने पसंदीदा सॉन्ग भी बताना है, ताकि जो सॉन्ग आप मुझे बताएंगे अगर वो आपका जवाब ठीक होगा तो सॉन्ग को मैं कर दूंगी प्ले, और अगर नहीं हुआ तो वो प्ले नहीं हो पाएगा सॉन्ग आपका. तो लास्ट में तो वैसे भी मैं राइट आंसर बता देती हूँ आप सबको, लेकिन 12 बजे से पहले आपने जवाब देना है तो वो ज्यादा विनर होगा हमारे इस सेगमेंट का. यार यहाँ पर मेरे पास एक और सॉन्ग है मजे का, दिल कर रहा है वो सुने आपके साथ. तो एक न्यू ड्रामा आया है, आपको पता है जब्त ड्रामा आया है, तो मतलब उसकी तो बहुत सारी किस्तें भी चल गई हैं. मैंने नहीं देखा, मैंने कुछ कुछ देखा लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आपके साथ ही उसकी ओएसटी सॉन्ग भी सुन लेते हैं. तो जी यहाँ पर करने लगी हूँ मैं प्ले और उसका ओएसटी सॉन्ग भी साथ मिलकर सुनते हैं, तो रहिएगा.

तो जी यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग एक सॉन्ग जो मैं चाह रही थी कि मैं अपने साथ आपको सुनाऊं, तो हमने साथ में सुना क्योंकि कोई भी न्यू चीज होती है, कोई भी न्यू सॉन्ग होता है, कोई भी न्यू बात होती है तो आपके बिना तो वो अधूरी होती है. तो हमेशा मैं हमेशा कोई भी न्यू चीज होती है तो मैं आप लोगों के साथ सुन रही होती हूँ. तो आज भी ऐसे ही हमने किया, एक न्यू ड्रामा था तो जिसका मैंने ओएसटी आपके सामने साथ में प्ले किया, सुना भी है. देख लेते हैं अभी हमारे साथ कौन मौजूद है और हमें कौन कमेंट करके क्या जवाब देता है मेरे सवाल का. तो सवाल सुन लेते हैं जी.

शक्कर के लिए मसरूर अहमद कहते हैं कि आरजे सना जी सवाल का जवाब है अंडा मुर्गी का हुआ, अगर सवाल ठीक हो तो फायजा का सॉन्ग सुना दें। फायजा अली की आवाज में जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो यार उनका सॉन्ग भी प्ले करना बाकी रह गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि सुबह लग ही नहीं दिए यार फायजा अली की आवाज में, सॉन्ग नहीं प्ले किया तो मुझे तो वाकई में ऐसा नहीं लग रहा कि यार सुबह हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ। जी जी जी उनका सॉन्ग हम जरूर प्ले करेंगे, क्योंकि प्ले तो हम करते ही हैं ना उनका सॉन्ग, तो हम जरूर प्ले करेंगे। आज हमने सुबह सुबह उनका सॉन्ग प्ले नहीं किया था, ओके जी, लेकिन अभी हम करेंगे जरूर। और यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ मैं आप सबके जवाब का भी, जल्दी से मुझे जवाब दे। जब तक हम लोग सुनेंगे एक सॉन्ग फायजा अली की आवाज में, और देखते हैं कि आज कौन सा हम उनका सॉन्ग प्ले करने लगे हैं। अगर आप मुझे फायजा अली की आवाज में कोई सॉन्ग का नाम भी बता देते तो वो भी हमारे लिए बेस्ट हो जाता, लेकिन चलें ठीक है हम लोग खुद ही सर्च कर लेते हैं।

0: आपने ओपन करना है, वहां पर जाके मेरी आवाज को सुनना है. आवाज को सुनने के साथ देर बगैर देर किए आपने मुझे कमेंट करना है, कमेंट करने के साथ लाइक करना है और मेरे पेज को शेयर करना है. अगर आप लोग लाइक नहीं करते शेयर नहीं करते मुझे पता चल जाएगा कि किसने मेरे पेज को लाइक नहीं किया. तो जी आपने जाके लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है मेरे पेज को और मुझसे बात करने का आप जरिया बन सकते हैं. तो जी आपने मुझसे बात करनी है तो आपने SMS करना है 881 पे SKR लिखे विद यूनिवर्सिटी और प्यार से नाम के साथ आप मुझे SMS कर सकते हैं. मेरे सवाल को सुनने के बाद मेरे जवाब दे सकते हैं और अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम बता सकते हैं, ताकि अगर अपने सॉन्ग का नाम बताएंगे अगर आपका जवाब ठीक होगा हम सॉन्ग प्ले कर देंगे. अगर वो सॉन्ग प्ले नहीं होता तो आप समझिएगा कि आपका जवाब गलत था, तो आप थोड़ा दिमाग और चलाइएगा और देन राइट आंसर दीजिएगा. जब आपका सॉन्ग प्ले ना हो तो आपने कोशिश करती रहनी है. तो ये बहुत अच्छा सेगमेंट होता है, ये अच्छा गेम होता है जो कि मैं आपके साथ खेल रही होती हूँ, लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे होते. आप लोग तो शायद अभी तक नींद से भी नहीं उठे. भाई गर्मी है, गर्मी में आप लोग इनसे जल्दी उठा कर रहे हैं. आपको पता है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहना होता है आपको मेरे साथ, तो बहुत सारी बातें जमा होती हैं और इतने सारे दिन बाद अगर हम लोग मिले तो बहुत सारी बातें हैं यार आपने करनी है जो मुझसे. धूप वैसे ही है, गर्मी किसके पास ज्यादा है ये भी आपने मुझे बताना है कि आप लोग गर्मी की वजह से बाहर जाते हैं कि नहीं जाते. जाते हैं तो भी बताएं कि ऐसा कौन सा काम करने जा रहे होते हैं जो आपको एनी हाउ घर से निकलना पड़ता है, चाहे छुट्टी हो चाहे ऑफिस वर्क डे हो, क्योंकि बाहर तो जाना ही पड़ता है ना, चाहे फीमेल्स हों या मेल्स हों. तो आपने मुझे बताना है कि आप लोग ऐसा क्या जॉब करते हैं, ऐसा क्या काम करते हैं कि आपने बाहर जाना पड़ता है, और गर्मी किसको ज्यादा लगती है. गर्मी तो हो रही है लेकिन लगती किसको ज्यादा है ये आप मुझे जरूर बताइएगा. कुछ लोग होते हैं जिसको कम गर्मी लग रही होती है, किसको थोड़ा बस कहते हैं ठीक है यार काम तो करना है. तो ऐसे ऐसे कौन कौन लोग मेरे साथ मौजूद हैं मुझे ये भी पता होना चाहिए. तो मुझे बताएं कि आप लोगों को गर्मी लगती है तो आप लोग जाते हैं बाहर या नहीं जाते, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि गर्मी तो बहुत शदीद हो रही है अभी. पर टाइम होता है वापस एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का. हम ब्रेक की तरफ जाएंगे वापस आके करेंगे मजे मजे की बातें और मैं अपना राइट आंसर भी आपको दे दूंगी जैसे ही ब्रेक से वापस आऊंगी. तो देर नहीं करिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, सुनिएगा और रहिएगा मेरे साथ ही, क्योंकि मैं आते साथ अपना राइट आंसर आपको बता दूंगी. देन उसके बाद हम करेंगे मजे मजे का एक और सॉन्ग प्ले, उसके बाद थोड़ी सी और बातें, देन और सॉन्ग प्ले. दीजिए आपने जाके मुझे जवाब देना और अपने सॉन्ग को जो है मुझे भेज देना है, ताकि अगर आपका जवाब ठीक होगा तो आपका सॉन्ग हम प्ले कर देंगे. ओके जी रहिएगा मेरे
1: होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट के तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अमाजी शहर सखर में. मेदे जा मसला, गैस, बदहजमी, कब्ज, खूनी ऐं बादी बवासीर, जनाना बीमार समेत इन मर्जन जो इलाज करे रहो आहे.
2: It's time to commercial break.

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

इस और मैं आपको बता दी चलूंगा. सवाल था, सवाल मेरा ये था कि आपने मुझे बताना था कि अमजद और असलम दो दोस्त हैं और अमजद की मुर्गी चली जाती है असलम के घर पे, वहाँ पर जाके दे देती है वो अंडा. तो आपने बताना था कि वो अंडा किसका हुआ, लेकिन जिसने मुझे अभी तक बता दिया है और जिसके सॉन्ग प्ले हो गए हैं इसका मतलब है कि वो जो है हमारा ये सेगमेंट जीत चुके हैं. ओके जी, और लास्ट में फैजा सुमरो का मैं सॉन्ग भी प्ले कर दूंगी क्योंकि वो भी ये सेगमेंट जीत गए हैं अब्दुल रज़ाक. और इसके अलावा मसरूर अहमद कराची से, और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि आपने मुझे बताना था जो भी जवाब, लेकिन आपने जिसने भी जो जवाब मुझे दे दिया है वो जीत गया है आज का ये मेरा सेगमेंट. और जो मेरा राइट आंसर था वो यही राइट आंसर था कि जो अंडा है वो मुर्गी का ही हुआ, ना वो अमजद का हुआ ना वो असलम का हुआ, वो अंडा मुर्गी का ही हुआ. भले वो उसने घर, उसके घर पे जाके दे दिया, कहीं भी दे दी है तो मुर्गी का अंडा है ना.

जी कर दिया सॉन्ग प्ले, रहेगा साथ, सुनते हैं ये सॉन्ग, उसके बाद करेंगे थोड़ी सी और बातें, क्योंकि टाइम रह गया है बहुत कम, और 20 मिनट्स रह गए हैं हमारे पास, 20 मिनट्स में मैंने और भी बहुत सारी आपकी बातें करनी है और भी बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले करने हैं. तो जी यहाँ पर सॉन्ग सुन लेते हैं पहले फौजिया सुमरों का, जो फरमाइश है हमारे लिसनर की अब्दुल रज़ाक की, क्योंकि वही सेगमेंट जीत चुके हैं. तो रहेगा मेरे साथ, सुनते हैं ये सॉन्ग.

0: तो जी जैसा कि आपको बताया कि सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग एक फरमाइशी सॉन्ग, क्योंकि वो भी हमारे सेगमेंट जीत गए थे। यहाँ पर चलते हैं एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, वापस आके करेंगे दूसरी बातें, क्योंकि अभी टाइम सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। तो जी कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना भी जरूरी है, तो चलते हैं, वापस आएंगे, वापस आके करते हैं बाकी की बात, रहिएगा मेरे साथ।
1: सखर FM 88
2: सखर की आवाज,
1: खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
2: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
1: DHMS सिंध,
2: RHMP इस्लामाबाद,
1: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
2: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
1: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
2: कमर दर्द,
1: अर्कुन निसा,
2: जोड़ों का दर्द,
1: हेपेटाइटिस,
2: वजन की कमी या ज्यादती,
1: बे औला
2: जिंदगी की

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।
2: शहबाज जमाली आपने मुझे ज्वाइन किया है, ऐसे आपने मुझे ज्वाइन कर देते हैं हर संडे रहता है आपको मेरे साथ सुबह दोपहर सुबह 11 बजे दोपहर 1 बजे तक आओ बात करें मैं आप और मैं रहते हैं साथ तो जो भी बात वगैरह जो भी बहुत सारी बातें जमा करके आप लोग करनी होती हैं संडे को वो मुझसे मेरे साथ। और इसके अलावा मैं बताऊं कि जो मेरे सेगमेंट के क्वेश्चन हैं वो बहुत आसान होते हैं, आपने सिर्फ थोड़ा सा दिमाग को चलाना होता है, हाजिर नाजिर बैठना होता है और आपने मुंह हाथ धो लेना होता है, उठना होता है, बस आपने इतना सा काम करना है और दिमाग को थोड़ा सा चलाना है, आपने आपको जवाब खुद ही मिल जाता है। नकल के लिए कहते हैं अकल की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर आपको नकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके अंदर अकल वैसे ही आ जाएगी जब आप लोग माइंड फ्रेश करके बैठेंगे, मतलब कि आप लोग खुद से फ्रेश होकर बैठेंगे। तो जी अकल के लिए कहते हैं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच कराची से आप मुझे सुन रहे हैं। अल्ताफ अली गादी बलोच कैसे हैं आप, और बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे ज्वाइन किया है, ऐसे ही आपने हर संडे मुझे ज्वाइन करते रहना है सुबह 11 बजे तक दोपहर 1 बजे तक रहता है आपका मेरे साथ ओनली हर संडे आओ बात करें मैं GAFM 88 पर। तो जी आप सुन रहे हैं आवाज विद आरजी सना की, मुझे ये बताना कि आपको मेरा शो कैसा लगा, अगर आपने मुझे फर्स्ट टाइम सुना तो आपने मुझे बताना है कि मेरा शो कैसा लगता है आपको या कैसा लगा है आपको, और नेक्स्ट टाइम आपने मुझे ऐसे ही ज्वाइन करते रहना क्योंकि मुझे रहेगा आपका इंतजार। और ये हमारी एक फैमिली होती है जहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और अपने 2 घंटे एक्सपेंड ऐसे कर रहे होते हैं कि जैसे 2 घंटे हमारे हैं नहीं और पता ही नहीं चलते इतनी सारी बातें हो जाती हैं इन 2 घंटों में। तो इसके अलावा हमारे पास साथ मौजूद हैं शहबाज अली जो जमाली कहते हैं कि सॉन्ग प्ले करें, जी सॉन्ग मैं प्ले करूंगी लेकिन अगर यहाँ पर मेरे क्वेश्चन के मैं सॉन्ग प्ले करूँ, आपने मुझे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया लेकिन कौन सा सॉन्ग, आपने मुझे नाम तो नहीं बताया।

या कमलीट आप अगर आप मुझे सॉन्ग का नाम लिख देते तो मुझे आसानी हो जाती है सॉन्ग को ढूंढने में. लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि जो है ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपने मुझे लिखा है. तो कोई बात नहीं, अगर आप नेक्स्ट संडे मुझे ज्वाइन करेंगे तो आप मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं आपका सॉन्ग प्ले कर सकूं. लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ होना मौजूद जरूर होगा ना, क्योंकि आप लोग मेरे साथ मौजूद होंगे तो ही आपका सॉन्ग प्ले हो सकेगा. तो आपने रहना होगा मेरे साथ उस दिन भी. पता है कि यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं और 10 मिनट भी पूरे नहीं होते, जिसमें हमने सॉन्ग भी प्ले करना होता है और जिसमें हमें टाटा भाई बेगर भी करना होता है. क्योंकि 10 मिनट रह गए, 10 मिनट के अंदर सिर्फ 5 मिनट हमारे पास होते हैं और 5 मिनट हम लोग दे देते हैं एक सॉन्ग को. तो कोई बात नहीं, और रहेगा जो है ना हमेशा मेरे साथ ही. अगर मेरे एक हफ्ते बाद अगर मैं आप लोगों के पास आती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक हफ्ते तक हम लोग साथ नहीं होते. हम लोग एक हफ्ते में भी साथ होते हैं. आप लोग लिख लिया करें, बहुत सारी जो बातें होती हैं जो करनी होती हैं वो आप मेरे लिए लिख लिया करें, क्योंकि साथ में हम लोग वो बातें कर लेते हैं. तो थोड़ा जो है ना मतलब एक माइंड फ्रेश हो जाती है. जिसके पास दोस्त नहीं होते वो मुझे दोस्त भी समझ लेता है, जो जिसके पास बहन नहीं हो मुझे बहन भी समझ लेता है. तो मेरे पास इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं अभी मौजूद, तो जो सिस्टर मुझे बनाते हैं और मैं जिनके लिए सिस्टर भी हूँ, मेरे भाइयों की तरह हैं वो लोग जो मेरे साथ मौजूद हैं और हमेशा जो है मुझे टाइमली ज्वाइन भी करते हैं, मेरे साथ जवाब भी देते हैं, सिस्टर करके बात भी करते हैं, बोलते हैं यार सिस्टर आप ऐसी हैं. बिल्कुल अच्छा लगता है ना कि अगर आपने मुझे अपना समझा है, मैं आपको अपना समझ के आपको कुछ बोल रही हूँ, तो इसका मतलब यही है कि हम लोग एक फैमिली की तरह यहाँ पर रह रहे होते हैं ना. तो काफ़ी टाइम से आप लोग मेरे लिसनर्स हैं, फैंस हैं, और मतलब मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करना. मैं नहीं आती, मेरा दिन भी अजीब गुजरता है यार. 2 घंटे मैंने क्यों नहीं आपसे बात की, क्योंकि 2 घंटे

लेकिन यहाँ पर एक और सॉन्ग मैंने जो है ना लगाया है, तो वो मैंने सॉन्ग रोक दिया है लास्ट के लिए, ताकि लास्ट में वो सॉन्ग सुनेंगे ना हम लोग। तो कौन कौन उठ गया भाई जिसने मुझे अभी लेट सुन रहे हैं, जो मैसेज भी नहीं कर रहे कि यार मैडम डांटे ना तो हर चीज है ना आपको नहीं डांटने वाली, और आप लोग मेरे साथ हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, सारे दोस्त हैं मेरे, तो मेरे साथ ही हैं आप लोग मौजूद हमेशा से। अगर आप लोग कमेंट नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, अगर आप मुझे सुन भी रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं खामोशी के साथ भी तो कोई बात नहीं जी। आपने मेरी आवाज़ को सुनना है, और सुनने के साथ जिसने अभी तक मुझे लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, या आप लोगों ने मेरे पेज को शेयर नहीं किया, मुझे पता चल गया है बेटा आपने मुझे जाके शेयर करना, जाएं शेयर करें मेरे पेज को। और जो मुझे अभी सुन रहा है तो कोई बात नहीं, अगर अभी भी सुन रहे हैं तो आप लोग मुझे SMS कर सकते हैं कि आप मेरे साथ मौजूद हैं, नींद से उठ गए हैं, नाश्ता भी कर लिया है, खाना पर ये तो खाने का टाइम है, खाना भी आपने खा लिया, गुड इवनिंग भी खत्म, नहीं सॉरी गुड मॉर्निंग तो खत्म हो गई, गुड आफ्टरनून चल रहा है ना अभी, तो जी गुड आफ्टरनून का ही आप लोग मुझे SMS कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको कोई नहीं डांट रही, बस खुशी होगी कि आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा लड़काना से हमारे साथ मौजूद हैं, लड़काना याली मदद, स्मॉल सिस्टर हाउ डू यू डू, आई एम फाइन, शो इज़ वेरी नाइस, सदाकत हुसैन मिरानी साहब बचल शाह मियानी सक्कर से, कैसे हैं आप जो है सदाकत हुसैन, बहुत देर से आपने मुझे ज्वाइन किया, मैं तो सोच रही थी आप आज सबसे पहले ज्वाइन करेंगे मुझे, लेकिन ज्वाइन किया है, ये अच्छा लगा कि आप मुझे ज्वाइन किया, बहुत जल्दी टाइम से ज्वाइन कर लेना है। ओके जी, और जो सॉन्ग मुझे वो बताते हैं शहबाज जमाली, कहते हैं सॉन्ग ये है जिंदगी देने वाले तेरी दुनिया से जी भर गया, ओ हो इतना उदास सॉन्ग, ऐसे ना करें भाई साहब, अभी सुबह का आगाज हुआ है, अगर इतने सैड सॉन्ग अगर हमने सुनना शुरू कर दिए तो हमारा दिन ही नहीं गुजरेगा भाई वैसे सारे के सारे यहाँ पर सैड आत्माएं बैठी हैं, और मैं खुद एक सैड आत्मा बैठी हूँ आपके सामने, तो जी ऐसे ना करें, अच्छा अच्छा सॉन्ग सुने और अच्छी अच्छी बातें करें कि दिन भी अच्छा गुजरे, आपका आपकी लाइफ भी अच्छी गुजरे, और अल्लाह से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, ऐसी दुआ आप लोग मेरे लिए भी करते रहा करें कि मैं भी हमेशा खुश हूँ, मेरी कुछ टेंशन से हैं तो वो भी खत्म हो जाए, आप लोग प्लीज दुआ करिए किएगा कि मेरी कुछ टेंशन्स हैं जो मेरी अपनी हैं वो मेरी ख़त्म हो जाएं, आपकी दुआ से वो ख़त्म हो सकती हैं, तो आप लोग दिल से दुआ करिएगा कि मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, टेंशन से वो ख़त्म हो जाएं, और तो मतलब अगर मेरी कोई टेंशन ख़त्म हो गई तो इसका मतलब है कि आप लोगों को भी तो खुशी होगी ना कि यार आरजे सना हमारे साथ आती हैं तो वो अच्छे से बात कर रही हैं तो वो मतलब खुश हैं, अगर जिस दिन मैं खुश नहीं होती आपको पता है कि यार मेरा मैं खुद उदास होकर अब आपसे बात कर रही होती हूं, तो आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होता, तो ये इसलिए प्लीज़ आप दुआ करिएगा कि मेरी कुछ टेंशन है वो ख़त्म हो जाए, तो मेरी भी अल्लाह से दुआ कि आपकी हर परेशानी अल्लाह ताला आपकी ख़त्म कर दे, दिल से कहती हूँ, और हमेशा आप लोगों के लिए हमेशा दुख जो है ना ख़त्म हो जाए दुख सारे आपके, और हमेशा आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें मेरे साथ, मेरे शो में ज्वाइन करते रहें और मुझसे बात करते रहें, सारे प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो आपके वैसे ही प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इसी से शेयर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ हमेशा आप लोग खुश हैं, वो प्रॉब्लम्स अल्लाह ताला आपकी खत्म कर दे, तो ऐसे ही आपने दुआ करनी है मेरे लिए भी और रहना है मेरे साथ। और ये जो सॉन्ग आप मुझे बता रहे हैं यार भाई भाई प्लीज़ प्लीज़ सॉन्ग आप भी ना सुना करें, और ना मैं अगर ये मैं पहले खुद जाकर सुनूंगी, देखती हूँ अगर ये उदास नहीं हुआ तो नेक्स्ट संडे आपका जरूर ये सॉन्ग आपका मैं प्ले करूंगी, चाहे आप मेरे साथ मौजूद होते हैं या नहीं होते, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप मेरे साथ उस दिन भी मौजूद हों जिस दिन की आपका मैं सॉन्ग प्ले करूँ, तो जी मैं ये सॉन्ग प्ले करूंगी और लेकिन पहले खुद सुनूंगी इसको उसके बाद। ओके जी, तो ये संडे अगले संडे भी हम जो सॉन्ग प्ले करेंगे आपका शहबाज जमाली का। ओके जी, तो यहाँ पर चलते हैं अभी हम, क्योंकि टाइम हो गया है बिल्कुल टाटा बाय बाय करने वाला, तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और ये लास्ट टाइम एक सॉन्ग प्ले करने लगी हूँ, और ये सॉन्ग मैं प्ले करती हूँ तो उसको सुनते हैं साथ में मिलके, उसके बाद जो है ना मिलेंगे एक अगले इतवार को एक नए सवाल के साथ, एक नए सेगमेंट के साथ। आज का विनर आप लोग मेरे बन चुके हैं, जिसने मुझे राइट आंसर दिया था उसका सॉन्ग मैंने प्ले किया, तो बहुत खुशी होती है जब आप लोग जीत जाते हैं मेरे सेगमेंट, तो कोई बात नहीं, तो ये सॉन्ग मैंने कर दिया प्ले, आइए सुन लेते हैं, जब तक रखिएगा अपना बहुत सारा

पास मटियारी सकरन में यापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. बिल्कुल सारा प्रोग्राम वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो अगर आप भी वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो क्या जनाब इस तरह की बातें हैं जो कि आप लोगों को हम बताएंगे, जो कि आप लोगों के जहनों पर ये चीज वाजी हो जाएगी कि आप लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहिए वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स को एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को. तो कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं और क्यों आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम बातें आपको इस प्रोग्राम में पता चलेंगी. तो बिल्कुल जी, आपका हमारा साथ प्रोग्राम में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होने वाला है क्योंकि प्रोग्राम में आप लोगों के साथ हम खूबसूरती की बातें करने वाले हैं. तो बिल्कुल जी, खूबसूरती की बातों के साथ साथ आप लोगों के साथ और भी बहुत ज्यादा वाली बातें होती हैं. आप लोगों के लिए गाने होते हैं, आप लोगों के लिए मजे मजे की बातें हो, बहुत कुछ होता है जो आप चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर हो. इसी के साथ साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं. सो लिसनर्स, फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर, योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा. तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस प्यारे से प्रोग्राम में आप लोगों को प्यारा बनाने के लिए. और साथ ही साथ जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है अपने हाल चाल बताते जाइए. सो डियर लिसनर्स, अंत की फहालत कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे. तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ इसमें सुन रहे होते हैं. बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान. सो भी अपने काम पे कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला. बिकॉज आली रे आली, सिद्र आली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्के स्माइल लाने के लिए. तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जी. आज एक बहुत ब्यूटीफुल से कलाम के साथ ऐसा कलाम सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं. तो आप सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते जाइए और खूबसूरतियाँ हासिल करते जाइए.

ओके जनाब, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा कलाम यहाँ पर आप सुन रहे थे. साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. आपकी सिद्धराव के साथ माधुरी मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं. शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या तरीकेकार फॉलो करेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा बने, बताते हैं जनाब. लेकिन आज के प्रोग्राम में आप लोगों से टॉपिक यानी कि सवाल क्या पूछा जा रहा है तो वो भी जरा पहले बताते हैं. तो अगर आज के प्रोग्राम के सवाल के हिसाब से बात की जाए तो आज मेरा जो आप लोगों से सवाल होने वाला है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है. इस टॉपिक के ऊपर हम जो है ना ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की ये बहस जो कि अभी तक चलती आ रही है लेकिन हमें नहीं पता कि भाई इसका सही जो है ना वो जवाब क्या हो सकता है या फिर इसके ऊपर हम क्या ऐसी बातें हैं जो कि वाकई सच समझ सकते हैं कि क्या चीजें वाकई हकीकत है क्या चीजें नहीं. तो आज जो मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगी वो बिल्कुल इस तरह है कि आप मुझे बताएं कि क्या पैसा जो है वो खुशी हम पैसे से खरीद सकते हैं या फिर नहीं. अक्सर बहुत सारे लोगों की ना इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बहस हो जाती है. कुछ लोगों को लगता है कि पैसा जो है ना वो सारी खुशियां जो है ना उससे ही मिल सकती है और कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं और कहते हैं कि भाई पैसे से कुछ भी जो है ना सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन हम खुशी नहीं खरीद सकते. तो आज आप जरा मुझे बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना होगा कि क्या पैसे से जो है ना हम खुशी खरीद सकते हैं या फिर नहीं. क्योंकि आप क्या कहेंगे वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है. मुझे बताइए जल्दी से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे. अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LR के सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब. और आइए हमारे पेज के ऊपर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए और बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं और कहां से आप हमें सुन रहे हैं ये

0: करेंगे और ये प्रोडक्ट्स कहां पर मिल रहे हैं और कहां पर नहीं मिल रहे, तो ये चीज जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई आप जहां पर रह रहे हैं वहां पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, मिलने चाहिए, आप दरवाजा खोलें तो मिलते हो, तो उसके लिए आपने थोड़ी सी हमारी भी हेल्प करनी है। आपने ये करना है कि जो नंबर आपको बता रही हूं उसके ऊपर आपने बस रब्ता कर लेना है, और नंबर है 03 15 799 0595। बुड़ी 315 79 90 595 ही नंबर आए जैसे तुम्हारा राबतो करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से, पांजे करीबी जनरल स्टोर का अलावा पांजे गोठन में, पांजे शहरन में, हर जगह थे वाइटिश जा प्रोडक्ट हुजन या डी स्किन जा प्रोडक्ट हुजन, ही तमाम प्रोडक्ट्स तुम्हारा इजीली अवेलेबल कराए सको था। ओके जी, सो अवेलेबल कराते जाइए और इस्तेमाल करते जाइए और मुझे बताते जाइए कि आप कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद है, विलेज मोहम्मद उस्मान ब्रोही सकरेन से। अली अकबर ब्रोही भाई वालेकुम अस्सलाम, सदरा जी सॉन्ग सुनाए ममताज मोलाए बिल्कुल आ जाएंगे। और अदिल खान हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम मोरो, मुझे तरफा वहां के मंजन जो सलाम कबूल हो जाए, आई होप यू आर वेरी वेल, यस आई एम गुड, आप बताए आप कैसे। और मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद है, वेलकम टू शो स्वीट बुआ जी, वेलकम टू यू। अच्छा अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ ही, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब्दुल गफार कैसर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। और ही हमारे साथ सैयद फारूक, वालेकुम अस्सलाम। डियर आरजे सिद्रा मुस्कान आप कैसी हैं। सैयद फारूक शाह फ्रॉम खैरापुर से आप हमारे साथ मौजूद है, आपको खुश आमदीद एंड वेलकम कहते हैं। अच्छा उसके अलावा मुलाई मुजाहिद बोजार हमारे साथ मौजूद है, टूफ चूसल खां कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम स्वीट आज सिद्रा जी, कड़ा हाल है तमाम जा, मां ठीक है तमाम बताया कि आयो आई तमाम दुआओं दिनियो आई सुन जलाए, थैंक यू सो मच। अदील कहते हैं सिस्टर मोरो में आपके प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, चले मोरो में नहीं मिलते तो हम मोरो में भी अवेलेबल करा देते हैं। और वैसे आप ऐसा कीजिएगा कि जो नंबर आपको बता रही हूँ उसके ऊपर एक मरतबा कॉल कीजिएगा या फिर मैसेज कीजिएगा, उनको बताइए मोरो में नहीं मिल रहे प्रोडक्ट्स तो वो अवेलेबल करा देंगे। अच्छा वासा भाई हमारे साथ मौजूद है, ज्वाइन कर चुके हैं, हमें बहुत शुक्रिया। मुजाहिद कहते हैं सिजो प्ले, चले मैं कोशिश करती हूँ, लगाती हूँ आपकी पसंद के गाने। और चाचा खालिद जूनी जो हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, हाय सिद्रा मुस्कान बेटा, आई एम हियर विद यू, वेलकम चाचा वेलकम। ए एम अंसारी हमारे साथ कहते हैं फितरत सोचो हालात में तसादम है, वरना इंसान कैसा भी हो दिल का बुरा नहीं होता। सलाम एंड वेलकम ऑल, गुड आफ्टरनून। क्या बात है, इंसान बुरा नहीं होता ये आपको किसने बताया है। ए मंसारी कहते हैं अच्छा गाना लिखा है, चलें लगाएंगे जी आपकी पसंद का गाना भी और हुक्म करें। एसन आर पानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा चाला, उम्मीद खुश हूं, शाद हूं, आबाद हूं, नहीं याद हूं, नहीं विसरंदा, नहीं याद हूं, सही सही सही सही मतलब सही सही सही सही। और वजात मलकानी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम चाला सिद्रा मुस्कान, सलाम टू ईशा अली जिया और आपको, वालेकुम अस्सलाम। चाचा खालिद कहते हैं आप बोलती हो ना शो के स्टार्टिंग में, आपकी सिद्रा तो मैं सोचता हूँ क्या आप हमारी हैं थोड़ी थोड़ी सी सबकी हो। अच्छा उनके अलावा सईद फारूक हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका भी। और गाना लिखा है मेरे ख्याल में आपने, या लिखा है बाजी पैसा सिर्फ वक्त की जरूरत है जिंदगी के, यदि बाजी गर्मी का कोई हल तो बता दे भाई, मैं खुद परेशान हूँ, आपको कोई हल मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। वजात कहती टॉपिक सोचने वाली बात, खुशी उनकी बात हो रही है। आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि पैसे से क्या खुशियां इंसान खरीद सकता है, या फिर ये सिर्फ कहने की बातें हैं। और कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि भाई हाँ हमारे पास अगर बहुत ज्यादा वाला पैसा आ गया तो हम खुशियां खरीद सकते हैं, तो आप बताइए आपका इसके ऊपर क्या कहना है। और आपको क्या लगता है अगर आप वाइटिश प्यूरी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए, और आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं हमें बताइएगा। पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, जूसी यहाँ पर नहीं बनती तो लाइक और शेयर कीजिए। टाइम हो जाता है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आएंगे, तो आपका हमारा साथ पूरी पूरी 3 बजे तक का सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं सरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।
1: FM 88 Network, सिंध की आवाज।
2: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर तरह से मुराद ये कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं तो आपके पास वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है. आपको नाइट क्रीम मिल रही है, आपको फेयरनेस क्रीम मिल रही है, आपको एक्ने ट्यूब मिल रहा है, आपको सोप मिल रहा है, आपको फेस वॉश मिल रहा है, आपको लोशन मिल रहा है, आपको हेयर रिमूवल लोशन मिल रहे हैं. इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि हर तरह की जो है ना इंसान की जितनी सारी बेसिक नीड होती है ना, हर तरह से आप लोगों के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर से जाकर मालूम लेते हैं. अगर आप किसी भी सिटी से हमारा शो सुन रहे हैं, किसी भी सिटी से ताल्लुक है आपका, तो आपने जो है ना मालूम लेनी है वहाँ से जाकर कि आपके यहाँ व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं. अगर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे तो उसके लिए आपके पास नंबर जरूरी है जो कि आप डायल करेंगे. एक मरतबा आपने कॉल कर लेनी है या फिर मैसेज कर लेना है और नंबर है 03-15-799-0595. बुड़ी 315-79-95. ही नंबर आए जैसे तुम राबतो कहे एरिया में व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स जी अवेलेबल कराने के लिए. इनका अलावा व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तुम्हें थोड़ी मालूम दींदा हलूँ. तो अगर तुम इस्तेमाल करने जायो था तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के बारे में थोड़ी तुम्हें खबर हो जाए, थोड़ी ना बल्कि ज्यादा खबर हो जाए. अगर तुम व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम हणो या फिर हणण वारा आयो तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम की क्वालिटीज आहिन जिनमें व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम तुम्हारी स्किन की जो फ्रेश बनाई दिया है, तुम्हारी स्किन के फेयर बनाई दिया है. और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की जो है ना खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम साबित है जनाब. ये जल्द को नरमी, मुलायम और तरोताजा बनाने में मदद देती है. इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की खुश्की हो, दाग धब्बे हो और बेरोनकी हो, ये सारी चीजें कम हो जाती हैं जबकि आपकी जल्द साफ और चमकदार महसूस होना स्टार्ट हो जाती है. व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम में शामिल खास अज्जा आपकी जल्द की हिफाजत करते हैं और कुदरती खूबसूरती को उजागर करते हैं. रोजाना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेहरा फ्रेश, खूबसूरत और पुरकशिश नजर आना स्टार्ट हो जाता है. तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के साथ आपने लगाना है जी व्हाइटिश ब्यूटी सोप. अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी सोप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए जी. और इसके अलावा अगर आप फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए. लेकिन व्हाइटिश ब्यूटी का जो फेस वॉश है ना, वो वाइटामिन सी से तैयार किया गया है जो कि भैया की स्किन को ब्राइट बनाएगा आपकी स्किन के लिए, एंटी एजिंग के लिए है. और क्रीमी सा फेस वॉश है जिसे आप लगाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आप कितने अच्छे वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके जी, तो इस्तेमाल करेंगे. और वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं. और इसके साथ साथ अगर आपके चेहरे पर एक्ने बहुत ज्यादा आ चुके हैं, दाने आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा है, भाई दाने आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, तो आपने ये कहना है कि आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब अवेलेबल है. और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो कि फुल आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार किया गया है, यानी कि जड़ी बूटियां इसके अंदर ऐड की गई हैं. जड़ी बूटियां जो हैं वो आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे पर जो है ना वो एक्ने का खात्मा करती हैं. और ना सिर्फ एक्ने का खात्मा बल्कि आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल है या एक्ने किसी भी तरह का एक्ने है, एक्ने मार्क्स हैं, ब्लैक पॉट्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं या फिर जितने सारे मसले हैं, अच्छा वो वाली बात है कि भाई आपके चेहरे पर अगर कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, कोई बचपन से ऐसा निशान जो कि आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब सबसे पहले है जनाब, जबरदस्त है. तो तमाम लाजमी लगाए जो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब के लगाने का तरीकेकार यही आए तो तमाम राजे टाइम इस्तेमाल करना. इस्तेमाल करने का पहले पांजो फेस वॉश लाजमी कजो, आई पांजा हथ भी चंगे तरीके से क्लीन कजो जी. अगर तमाम जो प्रोडक्ट आना स्किन ते लगाए तो क्लीन हथन से लगाओ, साफ सुथरे हथन से लगाओ. उनका अलावा अगर ऐसा व्हाइटिश लवली क्रीम जो जिक्र कयो तो व्हाइटिश लवली क्रीम तमाम जी खूबसूरती जलाया आए बाबा. यही वो प्रोडक्ट आए जो हर एक इंसान लगाए सके तो इनमें को भी एज लिमिट कोने को. अगर तमाम डिठो हों तो खोड़ मानू ये चौदह तो बाबा असाज टाइप वारो प्रोडक्ट कोने को, तमाम जी टाइप वारो प्रोडक्ट आ सफा टाइप वारो प्रोडक्ट छो तो इन अंदर जी प्रॉपर्टीज आन वे सब उन्हें मानू के लिए भाई कोई भी

न लॻाए सघंदा आहिनि छो त वाइटिश लवली क्रीम हिकिड़ी फेयरनेस क्रीम आहे. फेयरनेस फार्मूला उहे हूंदा आहिनि जेके तव्हां हर एज में इस्तेमाल करे सघो था. हीउ वाइटमिन सां भरपूर फार्मूलो आहे. नंढड़ा ॿार हुजनि, जवान हुजनि, कुराड़ा हुजनि, मर्द हुजनि, मायूं हुजनि, तव्हां बिल्कुलु वाइटिश लवली क्रीम खे इस्तेमाल करे सघो था. उन खां अलावा वाइटिश लवली क्रीम जेका आहे हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि एड थियल आहे. सो बाबा मज़ा ई मज़ा अथव. वाइटिश लवली क्रीम लॻायो. अगरि तव्हां का जॉब कयो था, तव्हां पढ़ो था या तव्हां पढ़ायो था, कोई बि कमु कयो था, त वाइटिश लवली क्रीम इस्तेमालु तव्हां नथा कयो त बाबा तव्हां पंहिंजी स्किन ते ज़ुल्म कयो पिया. सो वाइटिश लवली क्रीम जो इस्तेमालु कयो. अगरि तव्हां काॾे बि वञो, पंहिंजे ॾींहं जो आगाज़ कयो त ख़ूबसूरती सां कयो ऐं पंहिंजी स्किन जी हिफ़ाज़त बि कयो. हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि एड आहे जेका तव्हांजी स्किन खे सिज जे असरातनि खां महफ़ूज़ रखंदी आहे. सो वाइटिश लवली क्रीम तव्हांजी हर स्किन टाइप जे लाइ आहे. तव्हां लॻायो ऐं ख़ूबसूरत थी वञो.

मुमताज मोलाई जे गाने जी तमा फरमाइश कई ना मुमताज मोलाई जो गानो हलायो तो उनन मानन चलाए जे के मुमताज मोलाई जे गाने जी फरमाइश कंदा है सो बिल्कुल जी प्रोग्राम आ वाइट एशियन जी स्किन ब्यूटी शो आई वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ हन जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ के तमा लगाइंदा आयो आ सोना थी वेंदा आयो उन के अलावा पोस्ट के तमा लाइक एंड शेयर कंदा हलो बाबा कंजूस यो इते न कंदा कयो पाजे खूबसूरती सा भी तमा कंजूसियो कयो था आई पोस्ट सा भी कंजूसियो कयो था ए किथे मजो इंदो न कंदा कयो कंजूसियो

जी मोहम्मद सुमान भाई, आपने टॉपिक के ऊपर बात करी है, क्या ही बात करी है भाई, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मौलाना सलाम अदद। अच्छा ऐसे नार पानी लिखते हैं, कौन बच्चे सामेता ऐसे गर्मी विच मरवे सा सही गाला वैसे। अच्छा वफा मीर मुनवर हमारे साथ मौजूद हैं, छा हाल आए तवा जो मां ठीक आया तवा सने प्रोग्राम बुधो पया सो मोहब्बत वैन तवा जो। अच्छा वजाहत कहते हैं सदरा घर वालों ने बहुत सख्ती की है शो में जाने की, शो में जाने के लिए सख्ती कर रहे हैं। अच्छा अच्छा लुबना हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम से जो जाने क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ। और नाइस शो, सलाम टू ऑल क्यूट फ्रेंड्स एंड मिस यू सो मच जिया, आप कहाँ चली गई हैं, प्लीज वापस आए ना, आपका नंबर भी ऑफ है कब से। अरे भाई क्या हो गया जिया को, जिया जो है ना आजकल वो एक अलग ही दुनिया में रह रही है, पता नहीं कहाँ है, अता पता ही नहीं किसी को आपसे भी गुम हो गई। अरे भाई इकबाल आशरी हमारे साथ मौजूद हैं मीरपुर खास से, आप हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं दीदार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो अदिल खान कहते हैं आज सॉन्ग तो सुनाइएगा, आसान कहें जे बिन में न ट्रिन में ओके। और सईद फारूक कहते हैं वैसे पैसों से ना बहुत काम हो सकते हैं, बट एक आपको बताता हूँ, पैसों से लड़कियां गोरी भी हो सकती हैं, सिर्फ लड़कियां लड़के नहीं ये ना इंसाफी है भाई, लड़के भी गोरे हो रहे हैं आजकल और आप भी हो सकते हैं जब आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है तो इस्तेमाल कीजिएगा। और फहीम कहते हैं सिद्रा कल जिसके बारे में आपने कहा था ना कि उसको क्रीम भेजो, चलें ठीक है ठीक है ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर ये कंपनी का बंदा है तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर मैं खुद ही परचेज कर लूंगा तो फिर ठीक है। अच्छा उसके अलावा हैं जी हमारे साथ जमशेद अली कहते हैं टॉपिक आंसर बिल्कुल खुशियां खरीद सकते हैं पैसों से, मेरी तो सबसे छोटी खुशी उसमें है कि मेरे पास 25 करोड़ हो तो मैं तुर्की जा सकूं, हिदायतुल्लाह हूं। अच्छा हिदायतुल्लाह हमारे साथ हैं, क्या बात है, 25 करोड़ हो तो तुर्की जाएंगे, थोड़े पैसों में भी तुर्की जा सकते हैं आप इतने पैसों में क्या वहां पर आप घर वर लेंगे, वहीं सेटल होने का इरादा है। अच्छा वैसे ये बात है तुर्की में घर लेना ना बहुत मुश्किल काम है, तुर्की में घर लेना वो बहुत महंगे मिलते हैं, तो घूम फिर कर आ जाए बस।

हाँ जी, और यहाँ पर बात हो रही है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, क्योंकि ना है कैंची परवा बाबा तेरे व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐसा सगर ना है, सो तो खूबसूरती दाटी जरूरी है। अगर ये खूबसूरत थियो बाबा व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करो, मोलाई मुजाहिद कहते हैं सिडू जी, टॉपिक इस दौर में पैसे से सब कुछ मिल सकता है, खुशी तो छोटी सी चीज है। फर्ज करें किसी गरीब को पैसों की जरूरत है, आप उसकी मदद करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। आपके पास पैसा नहीं होगा आप परेशान रहेंगी, पैसा होगा आप खुश रहेंगी और घर वाले भी। हाँ सही गाला वैसे।

Dinho Kris Baba. किशोर भाई आ चुके हैं. हेलो अदा सॉरी हाणे हाणे अख खुली आ सॉरी फॉर देर इट्स ओके. सनावला बिरोई हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम आकाश अली हमारे साथ ही. वालेकुम अस्सलाम आप ही बिल्कुल ठीक ठाक है. किधर में आकाश अली पीर जादो फ्रॉम मोरो सिटी. सॉन्ग प्ले करना अपनी पसंद का ओएसटी ओके. अच्छा चाचा खाले तुम भी लिखियो आज ही गानों यानी कि तुम लिंक शेयर कर ठीक हो गया.

मजाक कहते हैं तू यकीन जी गाल तू करी मां 10 जे नोट के भी बार बार दिसंदो आया नकली आया नकली नकली आया नकली एम अंसारी कहते हैं टॉपिक पे में अच्छा कहते हैं मैम साहब खुशियां पैसों से तो नहीं मिल सकती लेकिन हाँ कोई खुशी पैसों से जरूर मिल जाती है यानी तुम्हें भी एग्री कहूँ था अच्छा आदिल कहते हैं टॉपिक इस दौर में पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है सही बात है पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और साथ साथ डायल करते रहिए 03-15-799-0595 बड़ी पैसों 15-79-595

किशोर भाई कहते हैं टॉपिक बिल्कुल कुछ खुशियां हम पैसों से खरीद सकते हैं। हाँ वैसे सही गाला है। दर्द दिल आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, चंदा जाने कैसी हैं? वेलकम टू शो। माशाल्लाह बहुत प्यारा शो तुम्हारा, तुम्हारी तरह क्या बात है। थैंक यू जाना। और वफा शहजादो मक्सी हमारे साथ हैं, गोट मोहम्मद सफर मक्सी लाड़कानी खां तमा सांगे ज्वाइन कयो आहे। लाजवाब प्रोग्राम से मोहब्बतों प्यारे भाजो। और निदड़ी हमारे साथ है। ओहो गाना तो भलो आहे। अल्लाह गाई विधा। अरे चाचा खालिद कहते हैं नालो बाँ ते छो दिल ते छो न काके जी मर्जी हुई ना असा छा तो करी सको। निदड़ी कहती है मैं आ गई ते छा गई। हाँ जी बिल्कुल यही वाला सीन है आजकल। और कहती टॉपिक क्या है अभी आपने सुन लिया होगा। और ये भाईजान कहते हैं पैसे खा इंसान टेम्पररी खुशियों खरीद करे सके थो। टेम्पररी खुशियों ओके। अच्छा कहते कंजूस मानन जो शो बदूं था इन्हें चे करे। अल्लाह मारी छ अल्लाह।

वाह वाह वाह वाह ॾाढो भलो गानो ॿुधो था हुन सां गॾु गॾु प्रोग्राम ॿुधो था जनाब ॿुधो था न बल्कि तव्हां ॿुधो था वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड कयो वञे थो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सां सो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हां इस्तेमालु कयो पिया वाइट एश ब्यूटी क्रीम आहे जनाब वाइट एश लवली क्रीम आहे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आहे और वाइट एश सोप आहे वाइट एश फेस वॉश आहे उन खां अलावा जेको बि प्रोडक्ट तव्हांखे मज़े जो लॻे थो जेको बि प्रोडक्ट तव्हां हणणु पसंदि कंदा आहियो त उहो तव्हां परचेस कयो ऐं तव्हां इस्तेमालु कयो यकीन कंदा तव्हांखे हीउ प्रोडक्ट ॾाढा पसंदि ईंदा छो त ही नेचुरल अज़ाज़ सां तयारु थियल आहिनि ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहिनि सो इनखे तव्हां ईज़िली इस्तेमालु करे सघो था कोई चांस न आहे त तव्हांजी स्किन ख़राब थींदी उबतो तव्हांजी स्किन भली थींदी वेंदी सोणी थींदी वेंदी तव्हां सफ़ा वी आई पी थींदा वेंदा सो लास्ट में लॻायो ऐं सुहिणा सुहिणा थियो अच्छा दर्दे दिल लगती है कि ए उदास से रूह मुस्कुराओ कि तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करता है बिल्कुल और निदड़ी कहती है समझ नहीं आ रही ये सॉन्ग कौन सी जुबान में सारी जुबानें थी इस गाने के अंदर अच्छा हिदायतुल्ला कहती तभी तो इतने पैसे ज्यादा लिखे थे ना सिद्रा महंगाई है हाँ उधर कुछ ज्यादा ही महंगाई है मतलब घर लेना उधर मुश्किल है बाकी सब ठीक ठाक है और मोहम्मद समान कहती नाइस सॉन्ग थैंक यू

0: ओके जी, अस्मा हमारे साथ हैं। अस्मा आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं अस्मा।
1: जो शहर जो घर सकरण आए सकरण जो आवाज
2: जी FM 90.8।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. लोग बड़े मासूम होते हैं जिनको अगर चीजें समझ नहीं आती ना तो वो चीजों को इग्नोर कर देते हैं तो मैं नहीं चाहती कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर कर दें क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम इतनी शानदार क्रीम है ना कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे जनाब वाह वाह वाह वाह मजो अची वो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका वाइटामिन ई बीड्स सा तैयार थियल आहे अंदर माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन भी आहे ऐं तव्हांजे स्किन खे जेको आहे सिर्फ़ु ॿिनि ॾींहंनि जे इस्तेमाल में रिज़ल्ट ॾियण वारो प्रोडक्ट अथव तव्हां इहो सोचींदा हूंदा त ॿिनि रातिनि में कीअं रिज़ल्ट ॾींदी बिल्कुलु ॾींदी जनाब हिनजे इधर जेकी बि चीज़ूं एड थियल आहिनि एतिरे ज़बरदस्त तरीक़े वारियूं एड थियल आहिनि जो आपकी ख़ूबसूरती को न इतना बढ़ा देंगी कि आपकी ख़ूबसूरती जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आप लोगों की ख़ूबसूरती ही नहीं बल्कि आपके चेहरे पर जितने प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होते जाएंगे क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है एक मयारी ब्यूटी क्रीम है ये जल्द को नमी फराहम करती है और चेहरे को नरम मुलायम और तरोताज़ा रखने में मदद दे रही है अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल बाकायदा से करते हैं तो आपकी जिंदगी जो बेरोनकी है वो भी कम हो जाती है चेहरा ज्यादा साफ रोशन और दिलकश दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब खुसूसी अज्जा आपकी जल्द को फ्रेश एहसास देते हैं और खूबसूरती में इजाफा करते हैं अगर आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जल्द जो है वो कुदरती निखार आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाता है अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती रहे और आपको जो रिजल्ट्स मिले वो नेचुरल मिले तो आप लोगों ने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है सिर्फ 2 दिनों में वाज़े नताइज के लिए है डी स्किन वाइटनिंग नाइट क्रीम है जनाब जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिल्द को जो है ना वो इस तरह से मॉइस्चराइज कर देगी कि आप खुद ही कहेंगे कि वाह वाह मज़ो अची वो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आए जगह तुम ईज़ीली इस्तेमाल करे सको था ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहे ख़ासि करे जेको आहे हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे इहा ॿुधाईंदी हला त हीअ मेडिकेटेड क्रीम आहे यानी कि डॉक्टर्स जी निगरानी जे अंदर थियल हिकिड़ो प्रोडक्ट जेको फुल डॉक्टर जी निगरानी जे अंदर तयार थियल आहे हिन में कोई बि केमिकल एड थियल न आहे ऐं तव्हांजी स्किन में जेको आहे सफ़ा वी आई पी रिज़ल्ट आणी थी ऐं जंहिंजी स्किन काफ़ी सेंसिटिव आहे न हू बि आराम सां इस्तेमाल करे सघनि था सो जनाब बिल्कुलु तव्हां बि लॻायो छा था सोचो हुन सां गॾोगॾु अगरि तव्हां टी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाइणु चाहियो था त साण तव्हांखे टी स्किन फेस वॉश बि लॻाइणो आहे मसीह जी ॻाल्हि आहे त डी स्किन फेस वॉश जेको आहे इहो हाइलोरोनिक एसिड सीरम सां तयार थियल आहे जेको तव्हांजी स्किन खे मॉइस्चराइज कंदो आहे तव्हांजी स्किन खे क्लीन कंदो आहे ऐं तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट बि बणाईंदो आहे अगरि तव्हांजी स्किन जेको आहे न तव्हां पाणी घटि पीअंदा आहियो उन वजह से तव्हांजी स्किन खे जेको न काफ़ी प्रॉब्लम्स अची विया आहिनि सभ खां पहिरीं ॻाल्हि त बाबा पाणी जेको आहे न उहो घटि न पीअंदा कयो पाणी ज़्यादा ई तव्हां पीअंदा कयो उन सां तव्हांजी स्किन खे इलाही फ़ाइदो पवंदो आहे पर अगरि तव्हां में आदत घटि आहे तव्हां पाणी घटि यूज़ कंदा आहियो त तव्हां डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमालु कयो बिल्कुलु तव्हांजी स्किन खे जेको आहे न ख़ूबसूरती ख़ूबसूरती मिलंदी वेंदी सो डी स्किन फेस वॉश आहे जेको तव्हां ईज़ीली इस्तेमालु करे सघो था हर स्किन टाइप जे लाइ आहे ऐं हर माण्हू हिन खे इस्तेमालु करे सघो थो उन खां अलावा जेका ॿी ॻाल्हि आहे त डी स्किन फेस वॉश जेको आहे उहो तव्हां ॾींहं में 3 दफ़ा लॻाए सघो था 3 खां 4 दफ़ा बि लॻाए सघो था पर 4 खां 5 दफ़ा नथा लॻाए सघो छो त तव्हां जेतिरो घणो अगरि फेस वॉश कंदा आहियो पंहिंजे चेहरे ते त तव्हांजो जेको नेचुरल ऑयल आहे न उहो ख़तमु थी वेंदो आहे नेचुरल ऑयल अगरि तव्हांजी स्किन खां ख़तमु थी वियो त तव्हांजी स्किन जेका आहे न उहा सफ़ा ख़राब थी वेंदी आहे सो कुझु चीज़ूं ईअं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हां इग्नोर कंदा त पोइ तव्हांजी स्किन जेका न ख़राब थी वेंदी आहे सो बिल्कुलु तव्हां डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमालु कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो ओके जी अगरि तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर्स ते नथा मिलनि तव्हांजे एरिया में प्रोडक्ट्स नथा मिलनि त पोइ तव्हांखे डायल करिणो आहे 03-15-799-0595 3-15-79-5595 ही नंबर आहे जंहिं ते तव्हां राबितो करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर्स ते तमामु प्रोडक्ट्स जेको आहे न ईज़ीली अवेलेबल कराए सघो था सो ईज़ीली अवेलेबल करायो जनाब ऐं उन खां अलावा वठंदा हलो परचेस कंदा हलो ऐं ख़ूबसूरत थींदा हलो ओके जी सो यहाँ पर जो है ना प्रोग्राम आप हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम सुनते जा रहे हैं शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं आप हमें पैनल पर ज्वाइन करते जा रहे हैं कमेंट्स करते जा रहे हैं ओके जी तो बिल्कुल आप हमें ज्वाइन करते जाइए फेसबुक वाले पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए यहाँ पर आज कॉलिंग भी ली जा रही है तो कॉल्स ले लेते हैं और कॉलिंग अगर कॉलिंग नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें तो कॉलिंग नंबर है हमारा 0333221 8228 ये हमारा कॉलिंग नंबर है जिसके ऊपर आप कॉल करके हमारे प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं. तो आज आप लोगों की कुछ कॉल्स ले लेते हैं और देखते हैं कॉलर हमारे कॉल पर आते हैं कौन कौन से.

0: कुछ समय से प्रोग्राम है व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो आप हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जो है ना आप हमें आज कॉल करेंगे और कॉलिंग नंबर है जनाब 0332-1322-88। जल्दी जल्दी से कॉलिंग कीजिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की हम कॉल्स पे करते रहेंगे और ये वाला लिंक जो है ना आप लोगों की कॉल्स पे होंगी। सो यहाँ पर फर्स्ट कॉल आ चुकी है हमारे प्रोग्राम में और देखेंगे कि फर्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज शायद कट गई या फिर ये बोल ही नहीं रहे थे। ओके जी, तो आप भी कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर है 0332-1322-88। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, केरस से सगर मौजूद है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक था, बताया ठीक आयो। खैर मुबारक, बुधायो प्रोग्राम बुधो प्या जी। अच्छा, यो चवण लाइ तव्हां कॉल कई आहे। ओके जी, सो कॉलिंग नंबर 0332-1322-88। नेक्स्ट कॉलर ॾिसूं कहिड़े से सगर मौजूद आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। कहिड़े से सगर मौजूद
1: आहे?
0: आवाज कटिजी वियो थोरो, वराए नालो ॿुधाइजो पंहिंजो। ओके भाउ, तव्हां ठीकु आहियो, प्रोग्राम ॿुधो पिया। अच्छा, मूंखे ॿुधायो त तव्हां टॉपिक ॿुधो आहे जी प्रोग्राम जो, छा चवंदा टॉपिक ते?
1: अच्छा,
0: ओके ओके, बिल्कुलु कॉल ई वठंदा, तव्हां कॉल करे सघो था असांखे। असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो या फिर अॼु बसि ईअं कॉल कई अथव? चलो चलो, ओके ओके, थैंक यू। कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदा? जी ओके, थैंक यू सो मच, प्रोग्राम में कॉल कई प्यारा भाउ। ओके जनाब, सो कॉलिंग नंबर है 0332-1322-88। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। केरे से सगर मौजूद है? हेलो, अस्मा, यास्मीन। मैं यास्मीन को हमेशा आसमा बना देती हूँ, ऐसा क्यों? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप कैसी हैं यास्मीन? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हूँ। मुझे बताएं, प्रोग्राम सुन रही थी आप यास्मीन?
1: जी हाँ, समझे।
0: अच्छा, टॉपिक के ऊपर आप क्या कहने वाली हैं? याद ही नहीं रहा। टॉपिक ये है कि आपको क्या लगता है कि पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती है? अच्छा, पैसे से व्हाइट एश और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो खरीदे जा सकते हैं, तो क्या मतलब आप खरीदेंगी या?
1: खरीदी जा सकती है, हाँ, बहन को बताया, वो खरीदेगी।
0: चले, आप
1: भी आपको बताऊंगी।
0: चले ठीक है, मुझे जरूर बताइएगा। ओके जबरदस्त, चले जबरदस्त हो गया यास्मीन। और बताएं क्या कहेंगी? थैंक यू सो मच, ओके बहुत शुक्रिया।
1: आपके कई नाम रखे हुए, मैंने कहा मिस्त्री, चीनी,
0: खंड। अजकल मां सिंधी सिंधी जान थी गाले आ। थैंक यू सो मच यास्मीन, तव्हां सां ॻाल्हाए इलाही सुठो लॻंदो आहे, ईअं प्रोग्राम में कॉल कंदा कयो, ऐं बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारी प्यारी यास्मीन हमारे साथ मौजूद है, इन्हनि असांजा इलाही भला भला नाला रखिया आहिनि, मोहबतूं हूंदियूं आहिनि तव्हांजो। ओके, सो नेक्स्ट कॉल वठूं था, नेक्स्ट कॉलर असां सां गॾु ॾिसूं केरु मौजूद आहे। कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-88। हैलो, अस्सलाम वालेकुम।

0: कमियो इस्तेमाल कयो आ
1: मेरी भाजी का गांव ने बताया था मैसेज में हेलो जाना जानत
0: थे अच्छा तमा जे गोठ में न तो मिले
1: ना
0: किथे ता जो गोठ केड़ो आ
1: गोठ गुलाम कासिम कॉलोनी ने
0: चले हिंगोर जामी अवेलेबल कराए वठना सी मोहब्बत तू ता जो केड़न धोसन की याद कंदा
1: दोस्त है नजीर सोलंगी
0: जी जी ओके थैंक यू सो मच तुम प्रोग्राम में कॉल की यार भा तुम मोहबतू आन हिंगोर जाम में बिल्कुल तुम अस वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अवेलेबल कराइंदी उन अलावा तुम भी कॉल करो अलग कैसी कॉल मुखा हथ लगी वो ड्रॉप थी वही सो माजरत कॉलिंग नंबर है 0332132288 नेक्स्ट कॉल है ऐसू कैसे सगर मौजूद है हेलो वालेकुम असलम केर मौजूद ओके याकूबा छाला तानो खुश आयो
1: जाकिर
0: भाई छाला खुश आयो
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: खैर खैरियत तो प्रोग्राम बुधो पिया
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह
0: केड़ो प्रोग्राम आ बुधाए जो त नालो अचे वे तो
1: मोहनत तानो नाव आन तो आने बनावान
0: अच्छा टॉपिक भी पो न बुधो हुंदा वे चलो केड़न दोसन की याद कंदा लाड़काना का कॉल कई जी प्रोग्राम ना बुधन की कॉल लगी वे थी जी बेचारा बुधन था उन लगी मसलो है ओके जी सो कॉलिंग नंबर 0332132288 नेक्स्ट कॉल हेलो अस्सलाम वालेकुम केर मौजूद ओके कुर्बान भाई साला खुश आयो
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: पो भी तो लगी वी अव रोज कॉल ती
1: बिल्कुल
0: गर्मी ना है ते चलो मी वसे अला करी ना
1: अच्छा
0: सही दोस्तन की बिल्कुल याद पर मुख्य बुधा तो प्रोग्राम जो नालो छा है
1: प्रोग्राम जो नालो दिल से याद है प्रोग्राम जो नालो
0: छा है
1: याद
0: तो है पर बुधा तो केर याद करे
2: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक खूबसूरती जो इन ड्यू क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एंड जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अब ये जो असल राज खूबसूरती जो असल राज खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन खूबसूरती जो असल राज खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एंड जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी एंड चमकदार सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म एंड दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: मोहम्मद उमर बुघियो ट्रस्ट मोहम्मद उमर बुघियो मोहम्मद उमर बुघियो ट्रस्ट हॉस्पिटल जहां मोहम्मद उमर बुघियो ट्रस्ट हॉस्पिटल जहां मोहम्मद उमर बुघियो मोहम्मद उमर बुघियो ट्रस्ट हॉस्पिटल, जहां माहिर और तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी मुनासिब फीस पर मरीजों का इलाज किया जाता है। 24 घंटे इमरजेंसी, जदीद लेबोरेटरीज, जदीद ऑपरेशन थिएटर, अल्ट्रासाउंड, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर्स, सर्जिकल और मेडिकल सहूलियात, मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस। इंसानियत की खिदमत हमारा मकसद। एड्रेस

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

देखिए ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

मौजूद आहे या वरी तव्हांजो मैसेज शायदि मिसिंग पार थी वियो आहे छो तव्हांजो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया गंबट खां तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे और शोनी वारे साथ यहां पे आपको पता है पप्पा जान के कहने पर आज अम्मी जान ने बिरयानी बनाई है वो भी बकरे में लड़की बकरा खाते हुए कैसी लगेगी आज हम शोनी से जाने चले आप खाइए इंजॉय कीजिए और साइमा मीर वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह मक्खन जैसी आज सिद्रो शक्कर भंडारी आज कॉल क्लियर चली नो चिचमिच टॉपिक नहीं रियल खुशी पैसों से नहीं मिल सकती ओके और ये हमारे साथ है एस एस ओ खालिद आलम खान मोहम्मद खान ओके जी आपको खुश आमदीद कहते हैं ऐसे शो साहब और हमारे साथ हैं जी जुलरी का खालिक लाशारी अदि प्यारी खुश आयो आखिर में शमन जो गानो हलाए जो मिठो मिठो गालाए गालाए प्ले करियो यो गानो आ शायद चलो मां कोशिश कंदी तव्हांजो गानो हलाइण जी ऐं लास्ट में टाइम बची वियो त तव्हांजे लाइ हलायूं था एस एन अली बुकटी सां सगॾु मौजूदु आहे हेलो अदील खाना से सगर मौजूद है दर्द दिल हमारे साथ हैं दर्द दिल कहती है कि मेरे पास कब कोई दौलत थी चंदा बस एक दिल था वो भी तुम्हारा हुआ है मैं संभाल के रखूंगी अच्छा फजीला हमारे साथ मौजूद है फजीला सिंधी वालेकुम अस्सलाम आपको वेलकम करते हैं टॉपिक कहती है ना नहीं डियर अच्छा अहद अली अब्दुल अहद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम अहद अब्बासी दर्द दिल कहती है टॉपिक चंदा बिल्कुल भी नहीं पैसे जरूरत हैं जिंदगी जीने के लिए ओके न वाकई मां हाणे कंहिंसां बि कोन ॻाल्हाईंदी आहियां हिते सॼो मथो हणी थी वञा न सो बचंदो ई न आहे मथो कंहिंसां ॻाल्हाइण जे लाइ ए मंसारी कहती हमारी कॉल लगनी नहीं तो वाई आई एम ट्राइंग ये तो आप बताए ना अहद अब्बासी कहते हैं पैसन सा खुशियों खरीद नथियों करे सगजन ठीक है ऐसन कहते बोड़ी थी वही हाँ लगी ये तो आके फहीम कहते हैं आज मैंने भी कॉल ट्राई करी लेकिन लगी नहीं अरे कोशिश करें आपकी कॉल मिल जाएगी अच्छा सुमाटू गोपांग हमारे साथ मौजूद हैं आपको भी वेलकम करती हैं आपका गाना भी है लिस्ट में हम सुनाते हैं आपको गुलाम रहीम बलोच हमारे साथ हैं जबरदस्त प्रोग्राम बहुत शुक्रिया बिलाल अली आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम राशिद कोड़ो हमें सुन रहे हैं हेलो अच्छा बिलाल कहते हैं कि बढ़ जाती है कुछ और भी मिठास तेरी याद मिलाकर जो पी लूं कभी चाय आए हाय हाय हाँ जी फकीरी लड्डू आ बाबा

अच्छा, सो आप क्या कह रहे हैं, हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए. ये बहुत ही एक प्यारा सा गाना हमने लिस्ट में लगाया है जो कि हम सुनेंगे. और साथ साथ आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. साजन माशी हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं. सजाद अली जमाली नवाबशाह से हमें सुन रहे हैं, खुश आमदीद भाई.

0: अच्छा ए मंसारी मुखी लगू तव्हां मखण हणो पया इहो चई सघां थी तव्हांखे तव्हां सुञाणो किथे आसण ओके सो हाणे कुझु कॉल्स वेठूं था हा वाकई लॻी थो वजह तव्हां सभु कंजूस थी विया आहियो ओके सो कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322 एंड 88 सो हिते कॉल वठूं था ही वारी कॉल ॾिसूं केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे हैलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: केरु मौजूदु
1: केरु
0: इरशाद किथां कॉल कई
1: आहे
0: ओके इरशाद ठीकु आहियो प्रोग्राम ॿुधो पिया जी जी नालो अचे थो असांजे सोणे प्रोग्राम जो
1: अभी असल में छा जो कोई असल में छा जो वरी बुंदा फोन वरी तव्हां रे
0: अच्छा
1: हा तव्हां पाण सुराम ॿुधायो असां ॿई सुराम ॿुधायूं तव्हां मारो ॿुधायो हेॾी ॿुधायूं
0: ओके ओके मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां वाइटिश ब्यूटी क्रीम या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन्हनि मां कहिड़े क्रीम वठण जो इरादो कयो
1: आहे अॼु जेको हाणे ॿुधो त हाणे कुझु तयारी कई आहे पाण ॾिसो वरी घर जी कार अॼु में कुझु कहिड़ी इस्तेमालु कयूं वरी पोइ वठी अचूं
0: ओके ओके कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा ओके थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल कई इलाही सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए तव्हां इरादो कयो आहे त तव्हां लाज़मी वठिजो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि सो कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-88 नेक्स्ट कॉलर हैलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम भाजी क्या हाल वाले ठीक हो
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कौन हमारे साथ मौजूद है
2: मोहम्मद अजीम राजड़ी
0: ओके मोहम्मद अजीम क्या हाल है आपके ठीक ठाक है
2: अल्हम्दुलिल्लाह भाजी जो आप सुनाए
0: अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम सुन रहे हैं आप हमारा अजीज
2: जी हाँ भाजी प्रोग्राम तो सुनते हैं आपका
0: अच्छा नाम आ रहा है आपको मेरे प्रोग्राम का या बस सिर्फ सुनते हैं खाली लोगों की तरह
2: नाम आ रहा है भाजी
0: बताए मुझे जरा
2: वाइटिश जी
0: ओके डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप बताएं जरा इस्तेमाल करेंगे या खाली प्रोग्राम सुनेंगे
2: बाजी प्रोग्राम सुनने का डी स्किन अभी तक इस्तेमाल नहीं की
0: आपके एरिया में मिल रही है आपने मालूमात ली है वहाँ से
2: जी हाँ बाजी ली है वहाँ से नहीं मिल रही
0: अच्छा चलिए नंबर बताया जा रहा है प्रोग्राम के ऊपर उसके ऊपर ना आप कॉल कीजिएगा
2: ठीक है बाजी
0: कौन से दोस्तों को याद करेंगे
2: दोस्त है बाजी हमारा जुम्मन कलोड़ो शकील पंजाबी
0: जी जी
2: और सब सुनने वालों का सलाम
0: थैंक यू सो मच ओके जी कॉलिंग नंबर आई 0332-1322-88 नेक्स्ट कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम
0: केर असर सगर मौजूद आप
3: दुआ
0: दुआ खुशा अलहमदुल्ला ठीक है प्रोग्राम बुध पा दुआ टॉपिक ती छा चवंदी दुआ
3: सब कुछ बाबा सब कुछ पैसो आ
0: सब कुछ पैसो आई है नी माना ये जेके मानू चवन था ना त पैसे सा खुशियों न खरीद करे सकदा सिनन के चऊ ता पांजो पैसो सा के देई छडियो असा खरीद कंदा सी खुशियों बाबा पैसन सा अच्छा दुआ बुधायो केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया वाइटिश ब्यूटी क्रीम
3: हां
0: केतरा दिन थिया लगाई तव रोज लगाईंदा कयो रोज कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदो अच्छा चलो ठीकु आहे कॾहिं कॾहिं न रोज लॻाइजे भलो भलो रिज़ल्ट मिलेव पोइ छा पखो लाइ सुम्ही पियो क्रीम हणी
3: ख़ैर
0: मुबारक हुजनि तव्हांजे लाइ आहे तव्हां ॿुधंदा कयो चलो ठीकु आहे ओके दुआ ॿियो छा चवंदी ओके थैंक यू सो मच हमारी प्यारी दुआ मर्शद मौजूद दुश्मनन के सलाम ॾेई भॼी वई छोकिरी ओके सो हिकड़ी वठूं कॉल या वरी हिकड़ी वठूं था ओके सो हलो अस्सलाम वालेकुम हलो हलो वालेकुम अस्सलाम केर मौजूद
4: आहे
0: अमजद अली सुमरो किथां कॉल कई
4: आहे
0: किथां कॉल कई आहे ओके प्रोग्राम बुधो पिया
1: जी जी
0: चलो मुखे बुधायो नालो अचे तो प्रोग्राम जो
1: जी जी
0: अच्छा मुखे बुधायो त केड़न दोस्तन के याद कंदा
1: जी
0: केड़न दोस्तन के याद कंदा
1: जस हेलो सर शामिल सर
0: जी
1: बुधायो
0: ओके थैंक यू सो मच अदो सिर्फ जी जी करे पयो ओके सो बस हाणे हिते तव्हां कॉलर थोरो रेस्ट कयो ऐं असां वटि वक़्तु जेको आहे उहो बि ख़तमु थियण वारो आहे असां हिकु ॾींहुं छॾे करे ॿिए ॾींहुं तव्हांजी कॉलियूं वठंदा आहियूं यानी अॼु वरितियूं त सुभाणे छॾे वरी ॿिए ॾींहुं असां कॉलियूं वठंदासीं प्रोग्राम आहे जना वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो अवां ताईं पहुचाए वञे थो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सां सो ओके जी अमीन अली हमारे साथ मौजूद है हेलो मेरी हर धड़कन का तू जुनून अच्छा बिलाल कहते हैं एक वक्त एड़ो भी हो जो असी कहलाए हर पल फर्ज हुआ सी वो आहिस्ते आहिस्ते विसरंदा वया सी बगैर कहे सबब जे बेकार थींदा वया सी आए हाय

0: अच्छा निदड़ी कहती है टॉपिक हाँ ये सच है पैसों से खुशी मिल सकती है क्योंकि ये वो दुनिया है पैसों के लिए खून के रिश्ते भी बदले जाते हैं तो पैसों से खुशी सब कुछ मिल सकती है पैसा नहीं तो शायद आप भी नहीं या हकीकत है शायद कड़वो सच असांजे समाज जो ओके सो वरी इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाकात मुंहिंजी थिए थी जनाब 5 बजे वारे प्रोग्राम में 5 बजे खां वठी जेको आहे सो 6 बजे ताईं मां तव्हां सां गॾु हूंदमि ऐं हाणे असांजे वञण जो वक़्तु जेको आहे न थी वियो आहे सो नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूं था पंहिंजो ओहिड़ो सॼो ख़्यालु रखंदा किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां थी जा फीडबैक रहिजी विया आहिनि जा गाना रहिजी विया आहिनि सभिनी खां माज़रत कयूं था सो पंहिंजो ओहिड़ो सॼो ख़्यालु रखंदा मोकिलाणी न आहे बाबू सन सलामत सां सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर
1: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़
2: शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह लखीमाव जनाब में शिरकत अवाम पारा शहीद ऐबर के भेटा पेश करण अलविदा चवण जो सिलसिलो जारी जनाजे में मुख्तलिफ़ मुल्कन जे सभ खां वधीक वफ़दन बि शिरकत थिए सुभाणे तहरान में जनाज़े जो मर्कज़ी जुलूस बरामद थींदो 7 जुलाई ते मढ़ तहरान खां कुम मुंतकिल कयो वेंदो करबला ऐं नजफ़ में ताज़ियती जुलूस बरामद कया वेंदा 9 जुलाई ते बि मशहद में मढ़ मिटी माउ हवाले कयो वेंदो शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमनाई जी जनाज़े में माण्हुनि खे रोअंदो ॾिसी ट्रंप हैरान थी वियो अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट मूजिबि ट्रंप चयो त मां सम्झंदो हुयुसि ईरान जा माण्हू आयतुल्लाह खुमनाई सां नफ़रत कंदा हुआ पर जनाज़े में माण्हुनि खे रोअंदो ॾिसी हैरत थी आहे खुमनाई जो आख़िरी रस्मनि लाइ ईरान खे हफ़्ते जी मोहलत थींदी आहे ईरान अमरीका सां ठाह करण लाइ बेताब आहे ऐं डील लाइ मरी रहियो आहे अमरीका वेनेज़ुएला खे 1-0 में शिकस्त ॾिनी ईरान खे हारायो आहे ईरान ॿीहर आबाद थियणु चाहे थो असां सुठा माण्हू आहियूं ईरान खे अॻु में सुप्रीम लीडर जे आख़िरी रस्मनि लाइ हफ़्ते जी मोहलत ॾिनी आहे ईरान ऐं अमरीका विच में इस्लामाबाद अॼु नामे जी ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर पाकिस्तान में थींदो अरब मीडिया जी दावा अल अरबिया जी रिपोर्ट मूजिबि ईरान ऐं अमरीका विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर 11 जुलाई ते इस्लामाबाद में थींदो ईरान ते लॻियल पाबंदियुनि एटमी प्रोग्राम ऐं मुंतमल असासन बाबति ॻाल्हियूं थींदियूं ईरानी वफ़द जो फ़ैसिलो शहीद सुप्रीम लीडर जी तरफ़ीन बाद थींदो असां दुनिया जो सभ खां वॾो स्पेक्ट्रम ऑप्शन कयो टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक़्त जी घुर्ज आहे वफ़ाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारण ऐं शहज़ाद फातिमा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस शहज़ाद फातिमा चयो त इतफ़ाक़ी राय सां कानून साज़ी कई पई वञे वक़्त सां गॾु निज़ाम में बहितरी आणण ज़रूरी आहे आज़म नज़ीर तारण चयो तालीमी मक़सदनि ऐं फ्रीलांसिंग लाइ डिजिटल कनेक्टिविटी ज़रूरी आहे कंहिं हिकु कंपनीअ खे नवाज़ण वारनि निज़ामनि जूं शायदि न मिलियूं पीसीबी पारां वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड टेस्ट सीरीज लाइ 16 रुकनी क़ौमी टीम जो ऐलान शाहनवाज़ दानी खे हिकिड़ो ॿीहर नज़रअंदाज़ कयो वियो लाहौर में पीसीबी जी मेन सिलेक्शन कमेटी मेंबर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आकब जावेद चयो त शान मसूद जी जाइ ते बाबर आज़म क़ौमी टीम जो कप्तान हूंदो सोद शकील फिटनेस सबबि टीम जो हिसो न हूंदो आमिर जमाल अब्दुल्ला फज़ल अली उस्मान आज़ान अवेज़ स्काउट में शामिल हूंदा खुरम शहज़ाद इमाम उलक मोहम्मद अब्बास मोहम्मद अली मोहम्मद रिस्वान मोहम्मद अवेज़ ज़फ़र बि टीम जो हिसो हूंदा कारगिल जंग हीरो निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान जो 27वीं योमी शहादत अॼु मल्हायो पियो वञे सवाबी में शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जे आख़िरी आरामगाह ते तक़रीब सदर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ऐं सर्विस चीफ पारां ख़िराज अक़ीदत पेश कैप्टन कर्नल शेर खान 5 जुलाई 1999 में कारगिल जे महाज़ ते दुश्मन सां विढ़ंदे शहादत माणी दुश्मन बि कैप्टन कर्नल शेर खान जी बहादुरी जो एतराफ़ कयो सदर आसिफ़ ज़रदारी भेटा पेश कंदे चयो त कैप्टन कर्नल शेर खान जी लाज़वाब क़ुर्बानी हमेशह ज़िंदा रहंदी पाकिस्तान जा शहीद असांजा क़ौमी सरमायो आहिनि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त शहीदनि जी क़ुर्बानी खे हमेशह क़दुरु ऐं एतराम सां यादि रखियो वेंदो कराची में गर्मी की शिदत में वाज जो इम्कान मौसमियात खाते मूजिबि अॼु कराची जी गर्मी पद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं वञी सघे थो महसूस 38 डिग्री सेंटीग्रेड कई वेंदी ॾखण ओलह जूं हवाऊं 19 किलोमीटर फी कलाक जी रफ़्तार सां हली रहियूं आहिनि सिंध रिटायर्ड पार्टी पारा पाणी कोट ऐं सिंध जे वसीलनि जे फुलुट आवाम दुश्मन बजट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा हैदराबाद सखिया दारकान नवाब शाह भान सैदाबाद नसरुद्दोस सेवन शिदादकोट मदुराबाद बादा थुल कुंडी तंगवाणी ऐं ॿियनि सिंध में एहतजाजी मुज़ाहिरा अॻवाणनि जो चवणु आहे त सिंध हुकूमत सिंध जे बजट मां अरबियूं रुपया पंजाब कश्मीर गिलगित में ख़र्च कया आहिनि सिंध जे वसीलनि ते वफ़ा ग्राहताऊं खणी रहियो आहे पाणी ते वधारो खणियो पियो वञे जंहिं ख़िलाफ़ जदोजहद जारी रहंदी पछाणी पुलिस नंढी उमिरि जी शादी जे कूड़े तला ते यतीम नारीअ जी शादी रोकराए छॾी घोट कूड़े जा भाण में यतीम नारी कलसुम सोलंगी जी शादी तकरीब ते पुलिस कटकी पई पछाणी पुलिस कुंवार घोट ऐं मौलवी खे थाणे ते खणी आई शादी जी तकरीब मायूसी में तब्दील घोट अब्दुल गफूर जो चवणु आहे त पुलिस मुंहिंजे मुखालफ़नि जे कूड़े तला ते तज़लील नाइंसाफ़ी कई आहे नारी जी माउ जो चवणु आहे त मुंहिंजे भाणे जे धीअ जो संग न ॾियण ते पुलिस मदद सां मूंसां जुठ कई आहे
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTM
4: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
5: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
4: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई जनाजे में माउंट गिरोन तो ॾिसी ट्रंप हैरान थी वियो। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट मूजिबि ट्रंप चयो त मां सम्झंदो हुयुसि त ईरान जा माण्हू आयतुल्लाह खमनाई सां नफ़रत कंदा हुआ। संदसि जनाज़े में माण्हुनि खे रोअंदो ॾिसी हैरत थी आहे। खमनाई जी आख़िरी रस्मनि लाइ ईरान खे हफ़्ते जी मोहलत ॾिनी आहे। ईरान अमरीका सां ठाहघर करण लाइ बेताब आहे ऐं डील लाइ मरी रहियो आहे। अमरीका वेनेज़ुएला खे हिकु ॾींहं में शिकस्त ॾिनी ईरान खे बि हारायो आहे। ईरान ॿीहर आबाद थियणु चाहे थो। असां सुठा माण्हू आहियूं। ईरान खे अॻूणे सुप्रीम लीडर जी आख़िरी रस्मनि लाइ हफ़्ते जी मोहलत ॾिनी आहे। ईरान ऐं अमरीका विच में इस्लामाबाद जे यादाशनामे जी ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर पाकिस्तान में थींदो। अरब मीडिया जी दावा अल अरबिया जी रिपोर्ट मूजिबि ईरान ऐं अमरीका विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर 11 जुलाई ते इस्लामाबाद में थींदो। ईरान ते लॻल पाबंदनि एटमी प्रोग्राम ऐं मंझंदि असासनि बाबति ॻाल्हियूं थींदियूं। ईरानी वफ़ा जो फ़ैसिलो शहीद सुप्रीम लीडर जी तदफ़ीन बाद थींदो। असां दुनिया जो सभ खां वॾो स्पेक्ट्रम ऑक्शन कयो। टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक़्त जी घुर्ज आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ऐं शिज़ा फातिमा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिज़ा फातिमा चयो त इतफ़ाक़ी राय सां कानून साज़ी कई पई वञे। वक़्त सां गॾु इंतिज़ाम में बहितरी आणणु ज़रूरी आहे। आज़म नज़ीर तारड़ चयो त तालीमी मक़सदनि ऐं फ्रीलांसिंग लाइ डिजिटल कनेक्टिविटी ज़रूरी आहे। कंहिं हिकु कंपनी खे नवाज़ण वारे इल्ज़ामनि जूं शाहिदूं न आहिनि मिलियूं। पंजी जुलाई 1977 पाकिस्तान जी जमहूरियत जो कारो ॾींहुं आहे। हिन ॾींहं ते आवाम जी मेरिट आहिनि ऐं पार्लियामेंटी जमहूरियत ते रथाऊं आहियूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंहिंजे पैगाम में चयो त आमरियत सम्झो त आवाम जो आवाज़ दॿायो वेंदो, पर शहीद बेनज़ीर ऐं केतिरनि काकुड़नि जी क़ुर्बानी साबित कयो त आवामी हाकमियत खे कॾहिं बि शिकस्त नथी ॾेई सघिजे। 5 जुलाई असांखे आइन जी बालादस्ती जमहूरियत जे तहफ़ुज़ जी अज़म जी यादि ॾियारे थी। आवाम जे चूंडियल वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी हुकूमत ते माशला मड़ी वई। शर्जिलिना मेमण चयो त गैर जमहूरी अमल सियासत मुआशरे ऐं क़ौमी तरक़ीअ ते गहरा नाकारी असर विधा। शहीद भुट्टो ऐं शहीद राणी जमहूरी आइनी ऐं अवामी हक़नि लाइ तारीख़ की जदोजहद कई। पीपी आइन जमहूरियत ऐं अवामी हक़नि जी अलमबरदार आहे। पीसीबी पारां वेस्ट इंडीज़ ऐं इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ लाइ 16 रुकनी कमी टीम जो ऐलान। शाहनवाज़ डहाणी खे हिकु ॿीहर नज़रअंदाज़ कयो पियो। लाहौर में पीसीबी जे मेन्स सिलेक्शन कमेटी मेंबर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आकिब जावेद चयो त शान मसूद जी जाइ ते बाबर आज़म क़ौमी टीम जो कप्तान हूंदो। सोद शकील फिटनेस सबबि टीम जो हिसो न हूंदो। आमिर जमाल, अब्दुल्ला फज़ल, अली उस्मान ऐं आज़ान अवेस स्काउट में शामिल हूंदा। खुरम शहज़ाद, इमामुल हक, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिज़वान, मोहम्मद अवेस ज़फ़र बि टीम जो हिसो हूंदा।

0: कारगिल जंग के हीरो निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान जो 27वीं योम शहादत अज मल्हायो पियो वञे। सवाबी में शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जी आखिरी आरामगाह ते तकरीब, सदर वजीर आजम फील्ड मार्शल ऐं सर्विसिस चीफ्स पारां खिराज अक़ीदत पेश। कैप्टन कर्नल शेर खान 5 जुलाई 1999 में कारगिल जे महाज ते दुश्मन सां विढ़ंदे शहादत बाणी। दुश्मन बि कैप्टन कर्नल शेर खान जी बहादुरी जो एतराफ़ कयो। सदर आसिफ अली ज़रदारी भेटा पेश कंदे चयो त कैप्टन कर्नल शेर खान जी लाज़वाल क़ुर्बानी हमेशह ज़िंदा रहंदी। पाकिस्तान जा शहीद असांजा क़ौमी सरमायो आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चवण आहे त शहीदनि जी क़ुर्बानी खे हमेशह क़दुरु ऐं एतराम सां यादि रखियो वेंदो। कराची में अॼु गर्मी जी शिदत में वाधि जो इम्कान। मौसमियात खाते मूजिबि अॼु कराची जी गर्मी पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं वञी सघे थो। महसूसु 38 डिग्री सेंटीग्रेड कई वेंदी। ॾखण ओलह जूं हवाऊं 19 किलोमीटर फी कलाक जी रफ़्तार सां हली रहियूं आहिनि। कुंडी में ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि बेहोश थियल पीरसन फौत, फौतुनि जो अंगु टे थी वियो। फौत थियल ॿिनि भाइरनि जो नानो 60 साल असगर आराइंब हैदराबाद जी अस्पताल में फौत। गुज़िरियल ॾींहुं ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि ॿ भाइर मौके ते फौत थी विया हुआ। एसयूपी पारां पाणी घोट ऐं सिंध जे वज़ीरनि जी फुरलुट, आवाम दुश्मन बजट ख़िलाफ़ु मुज़ाहिरा। हैदराबाद सखर लाड़काणो नवाबशाह भान सैदाबाद नुसरत फिरोज सेवन शिदाद कोट मंज़ूराबाद बादा ठुल कुंडरी तंगवाणी ॿियनि शहरनि में बि एहतजाजी मुज़ाहिरा। अॻवाणनि जो चवण आहे त सिंध हुकूमत सिंध जे बजट मां 80 रुपया पंजाब कश्मीर ऐं गिलगित में ख़र्च कया आहिनि। सिंध जे वसीलनि ते वफ़ाक रेथाऊं आणे रहियो आहे। पाणी ते वधाड़ो हयो पियो वञे जंहिं ख़िलाफ़ु जदोजहद जारी रहंदी। विछाणी पुलिस नंढी उमिरि जी शादी जी कूड़े इतलाह ते यतीम नारी जी शादी रोकराए छॾी। घोट कूड़े जा भाण में यतीम नारी कलसुम सोलंगी जी शादी तकरीब ते पुलिस कड़की पई। विछाणी पुलिस कुंवार घोट ऐं मौलवी खे थाणे ते खणी आई। शादी जूं तकरीबूं मायूसीअ में तब्दील। घोट अब्दुल गफ़ूर जो चवणु आहे त पुलिस मुंहिंजे मुखालफ़नि जी कूड़े इतलाह ते तज़लील ऐं नाइंसाफ़ी कई आहे। नारीअ जे माउ जो चवणु आहे त मुंहिंजी भाण जे धीअ जो संग न ॾियण ते पुलिस जी मदद सां मूंसां झुठ कई आहे। कनकोट भरिसां डाटसन शाक में किरण सबबि नींगर ॿुॾी विया। पुल टुटण सबबि डाटसन हादसे जो शिकार। ॿुॾी वियल नींगरनि में 16 साल मुजीब ऐं 12 साल अब्दुल गफ़ार गोलो शामिल। ॻोठाणनि पारां पंहिंजी मदद पाण तहत नींगरनि जी ॻोल्हा जारी। इंतिज़ामिया खां मदद जी अपील।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे, मां गुलाब खान बेण।

सिंध राउंड अप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। वफ़ाक लाइ सखर हैदराबाद मोटरवे तामीर वॾो चैलेंज, आलमी इदारनि खां माली सहकार जो इंतज़ारु। मारड़ा बाज़ियाब करायो, बबरलोमी वारसन जो धरणो जारी, क़ौमी शाहरा बंदि करण जो चिताव। सिंध जे सरकारी स्कूलनि में हिंदू शागिर्दनि जे लाइ सनातन धर्म वारो निसाब पढ़ाइण जे लाइ लेट जारी। नैब टीम पारां टंडो आदम जो दौरो, तरक़ियाती स्कीमुनि जो जाइज़ो, आफ़िसरनि में थरथलो। सखर रेलवे इंतज़ामिया फाटक वटि फोतियुनि खे ई हादसे जो ज़िमेवार करार ॾेई छॾियो। रेलवे इंतज़ामिया पारां हादसे जो ज़िमेवार कार ड्राइवर। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, 5 जुलाई पाकिस्तान जे जमहूरी सफ़र जो कारो बाब। क़ौमी असेंबली जे मवासिलात बाबति स्टैंडिंग कमेटी जो इजलास चेयरमैन एजाज़ जखराणी जे सदारत हेठि थियो, जंहिंमें सिंध जे रोडनि जी ख़राब हालति, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जी कारकरदगी ऐं सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे ते तफ़सीली गौर कयो वियो। कमेटीअ जे मेंबरनि रमेश लाल चयो त सिंध में NH किथे नज़र नथी अचे। बोरे दौरान सेवण भरिसां जेको रोड कटियो वियो हो, उहो अञा ताईं बहाल न थी सघियो आहे। सिंध जे रोडनि जी हालति इंतिहाई ख़राबु आहे ऐं सम्झ में नथो अचे त सिंध सां अहिड़ी नाइंसाफ़ी छो थी रही आहे। मवासिलात वारे वज़ारत जे अमलदारनि ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त हलंदड़ माली साल जी PSTP में बलोचिस्तान जे मनसूबनि जे लाइ 115 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे बाबति ब्रीफिंग ॾींदे अमलदारनि ॿुधायो त मनसूबे खे 5 हिसनि में विरिहायो वियो आहे। पहिरियों हिसो हैदराबाद खां टंडो आदम ताईं 57 किलोमीटर, ॿियो हिसो टंडो आदम खां नवाबशाह ताईं 63.5 किलोमीटर, टियों हिसो नवाबशाह खां नौशर फिरोज़ ताईं 64.5 किलोमीटर, चोथों हिसो नौशर फिरोज़ खां राणीपुर ताईं 60.9 किलोमीटर ऐं पंजों हिसो राणीपुर खां सखर ताईं 59.6 किलोमीटर ढिघो हूंदो। ब्रीफिंग मूजिबि पहिरियों ऐं ॿियों हिसो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत एशियाई तरक़ियाती बैंक जे सहकार सां तामीर कयो वेंदो, जॾहिं त 3 हिसे जे लाइ OPEC फंडिंग कई वेंदी। चोथे ऐं 5 हिसे जे लाइ इस्लामी तरक़ियाती बैंक माली सहकार फराहम करे रही आहे। अमलदारनि ॿुधायो त कोशिश आहे त सेप्टेंबर ताईं लाॻापियल ठीकनि ते सयूं थी वञनि। 3 हिसे लाइ सलाहकारनि जी चूंड जे लाइ टेंडर जारी कया विया आहिनि, जॾहिं त

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वारन बिन हिस्सन लाइ एशियाई तरक्याती बैंक सां मुहाइदो फेबरवरी में थियण जो इम्कान आहे। ब्रीफिंग मुताबिक सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे जे लाइ मवासिलात वारी वज़ारत PSDP में 70 अरब रुपया रखण जी सिफारिश कई वई हुई, पर मनसूबे जे लाइ सिर्फ़ 30 अरब रुपयनि जी रक़म मुख़्तस कई वई आहे। आशूर जे ॾींहुं संगरार मां अगवा थियल मासूम न्याणी प्रिया कुमारी समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां गुम थियल मासूम ॿारनि जे बाज़ियाबी जे लाइ बबरलो बाईपास ते क़ाइमु एहतजाजी कैंप 8 ॾींहं बि जारी रही। एहतजाजी कैंप में सियासी ऐं समाजी अॻवाननि, वकीलनि, सहाफ़ियुनि ऐं शहरनि वॾे अंग में शिरकत करे गुम थियल ॿारनि जे वारसनि सां यकजहती जो इज़हार कयो। शिरकत कंदड़नि मुतालबो कयो त प्रिया कुमारी समेत सभिनी गुम थियल मासूम ॿारनि खे फौरी तौर ते बाज़ियाब करायो वञे। उन मौके ते पेटे अलफ सिंध जे अॻूणे सदर इनायत अली जमाली ऐं जनरल सेक्रेटरी एजाज़ चांडियो समेत ॿियनि अॻवाननि ऐं वारसनि चयो त खेन हर वक़्तु हुकूमत ऐं पुलिस मां मायूसी मिली आहे, जंहिं सबबि हू मजबूर थी बबरलो बाईपास ते एहतजाजी कैंप क़ाइमु करण ते मजबूर थिया आहिनि। हिननि चयो त गुम थियल ॿारनि जी बाज़ियाबी जे लाइ रुॻो ऐलाननि बदिरां अमली क़दम खया वञनि। वारसनि चिताउ ॾिनो त जेकॾहिं मासूम ॿारनि खे जल्द बाज़ियाब न करायो वियो त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो ऐं ईंदड़ मरहले में बबरलो क़ौमी शाहराह बंदि कयो वेंदो। तालीम खाते तरफ़ां सिंध जे सरकारी स्कूलनि में हिंदू शागिर्दनि जे लाइ सनातन धर्म वारो निसाब पढ़ाइण जे लाइ लेटर जारी कयो वियो आहे। तालीम खाते जे निसाब वारे सलाहकार फौजिया ख़ान तरफ़ां समूरनि डायरेक्टरनि ऐं DDOs खे उन सिलसिले में हिदायतूं जारी कयूं वियूं आहिनि। उन फ़ैसिले तहत 3 क्लास खां 5 क्लास ताईं जे हिंदू शागिर्दनि खे हाणे सनातन धर्म बाबति निसाब पढ़ायो वेंदो। उन क़दम जो मक़सदु अक़लियती शागिर्दनि खे उन्हनि जे मज़हबी तालीम फ़राहम करणु आहे। नेब टीम तंडो आदम पहुची वई, तरक़ियाती स्कीमुनि जो जाइज़ो। आफ़ीसरनि में थरथलो मची वियो। उन ॾस में सिंध जे 12 ज़िलनि में पब्लिक हेल्थ एजुकेशन वर्क्स, रोडस, बिल्डिंग्स समेत मुख़्तलिफ़ खातनि जे अरबे रुपयनि जी स्कीमुनि में गोबियुनि जी हलंदड़ जांच जे सिलसिले में नेब टीम टंडो आदम पहुची वई। टंडो आदम भिटशा रोड समेत टंडो आदम तालुके जे मुख़्तलिफ़ रोडनि ऐं बिल्डिंग्स जो मुआइनो कयो। मालूम थियो आहे त नेब टीम सांगड़ ज़िले में ऑयल एंड गैस जी रॉयल्टीअ मां साल 2012 खां 2018 दौरान थियल तरक़ियाती कमनि जो जाइज़ो वठंदी। नेब टीम पंहिंजे दौरे बाबति मक़ामी इंतिज़ामिया खे का आगाही नाहे ॾिनी। नेब टीम जे दौरे जो ॿुधी आफ़ीसरनि ऐं ठेकेदारनि में थरथलो मची वियो आहे। ॿिए तरफ़ नेब टीम कंहिं बि क़िस्म जा तफ़सील ॿुधाइण खां लवाए रही आहे। ज़रियन मूजिबि नेब टीम सांगड़ ज़िले जे 6 तालुकनि टंडो आदम, शहदादपुर, सांगड़, जाम नवाज़ अली, सिंजोरो ऐं खिपरे में थियल मुख़्तलिफ़ तरक़ियाती स्कीमुनि जो जाइज़ो वठंदी ऐं उन आधार ते रिपोर्ट तयारु करे आला अख़्तियारनि खे वधीक कार्रवाई जे लाइ मोकिलींदी। सखर आराई वेझो ट्रेन जे टकर में फोत थी वियल रिटायर्ड DSP ऐं संदसि भाउ वारो मामिलो रेलवे इंतिज़ामिया हादसे जे शिकार थियलनि खे ज़िमेवार करार ॾींदे मथां FIR दाख़िल करे छॾी। फोतुनि जे वारसनि पारां बि ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करण जो चिताउ ॾेई छॾियो। 3 ॾींहं अॻु आराई भरिसां गणंगवाह वटि होजमालो ट्रेन जे बग़ैर फाटक जे रेलवे क्रॉसिंग खां गुज़रंदड़ कार खे टकर थियण जे नतीजे में रिटायर्ड DSP दरिया ख़ान जतोई ऐं संदसि भाउ आरिफ जतोई फोत थी विया हुआ, जॾहिं त ॿ ॼणा सख़्तु ज़ख़्मी थी पिया हुआ, जिन मां हिकु ॼणे जी हालति हिन वक़्तु बि ॻणिती जोगी ॿुधाई पई वञे। रेलवे इंतिज़ामी हादसे जी ज़िमेवार कार ड्राइवर खे करार ॾींदे होजमालो ट्रेन जे इंचार्ज गार्ड अब्दुल हक महर जी फरियाद ते आबाद थाणे ते केस दाख़िल कराए छॾियो। रेलवे थाणे सखर जे SHO ज़ाहिद अबड़ो खां FIR लाइ मिलियल लेटर थाणे ते पेश कयो। FIR जे मतन मुताबिक़ कार ड्राइवर गैर ज़िमेवारी, लापरवाही ऐं तेज़ रफ़्तारी सां कार हलाईंदे गोसड़ जी सखर रोड ते ट्रेन सां टकराइजी वियो। हादसे में ज़ख़्मी थियलनि खे इलाज जे लाइ इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। वाक़िए बाबति इतलाह मिलंदे ई कार्रवाई करे केस दाख़िल कयो वियो आहे। गाॾी ऐं ड्राइवर ख़िलाफ़ वधीक कानूनी कार्रवाई शुरू कई वई आहे। ॿिए तरफ़ फोतियुनि जे वारसनि मुताबिक़ रेलवे इंतिज़ामिया असांजे ज़ख़्मनि ते लूणु बुरकियो आहे, नुक़सान बि असांजो थियो आहे ऐं रेलवे इंतिज़ामिया पंहिंजी नाअहली लापरवाही लिकाइण जे लाइ FIR बि असां मथां दाख़िल कराई वई आहे। हिननि चयो त जॾहिं होजमालो ट्रेन हलाइण जे लाइ तयारी कई वई हुई तॾहिं रेलवे ऐं ज़िले कौंसिल खे खुलियल फाटक नज़र छो न आयो। हुननि चयो त हितां सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कामयाबु थियल आहे, उन जो पुटु होजमालो ट्रेन हलाई हुई, फाटक न हुजण सबबि जानी नुक़सानु थियो आहे, जंहिंजी ज़िमेवारी रेलवे इंतिज़ामिया ऐं लाॻापियल अमलदारनि जी आहे। बिरादरीअ जे चङनि मुड़सनि सां मुशावरत बाद जल्द ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ क़ानूनी रस्तो इख़्तियारु कयो वेंदो।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याला, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु, मां आहियां गुलाब खान भेण।

सिंध राउंडअप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। वफ़ाक लाइ सखर हैदराबाद मोटरवे तामीर वॾो चैलेंज, आलमी इदारनि खां माली सहकार जो इंतज़ारु। बारडा बाज़ियाब करायो, बबरलोमी वारसनि जो धरणो जारी, क़ौमी शाहरा बंदि करण जो चिताव। सिंध जे सरकारी स्कूलनि में हिंदू शागिर्दनि जे लाइ सनातन धर्म वारो निसाब पढ़ाइण जे लाइ लेटर जारी। नैब टीम पारां टंडो आदम जो दौरो, तरक़ियाती स्कीमुनि जो जाइज़ो, आफ़िसरनि में थरथलो। सखर रेलवे इंतज़ामिया फाटक वटि फोतियुनि खे ई हादसे जो ज़िमेवार करार ॾेई छॾियो। रेलवे इंतज़ामिया पारां हादसे जो ज़िमेवार कार ड्राइवर। ऐं स्पेशल रिपोर्ट बि अव्हां ॿुधी सघंदा। 5 जुलाई पाकिस्तान जे जमहूरी सफ़र जो कारो

क़ौमी असेंबली जे मवासलात बाबति स्टैंडिंग कमेटी जो इजलास चेयरमैन एजाज़ जखराणी जे सदारत हेठि थियो, जंहिं में सिंध जे रोडनि जी ख़राब हालति, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जी कारकर्दगी ऐं सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे ते तफ़सीली गौर कयो वियो। कमेटीअ जे मेंबरनि रमेश लाल चयो त सिंध में इन शइ किथे नज़र नथी अचे। बोरे दौरान सेवण भरिसां जेको रोड कटियो वियो हो उहो अञा ताईं बहाल न थी सघियो आहे। सिंध जे रोडनि जी हालति इंतिहाई ख़राबु आहे ऐं सम्झ में नथो अचे त सिंध सां अहिड़ी नाइंसाफ़ी छो थी रही आहे। मवासलात वारे वज़ारत जे अमलदारनि ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त हलंदड़ माली साल जी PSTP में बलोचिस्तान जे मनसूबनि जे लाइ 115 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे बाबति ब्रीफिंग ॾींदे अमलदारनि ॿुधायो त मनसूबे खे 5 हिसनि में विरिहायो वियो आहे। पहिरियों हिसो हैदराबाद खां टंडो आदम ताईं 57 किलोमीटर, ॿियो हिसो टंडो आदम खां नवाबशाह ताईं 63.5 किलोमीटर, टियों हिसो नवाबशाह खां नौशर फिरोज़ ताईं 64.5 किलोमीटर, चोथों हिसो नौशर फिरोज़ खां राणीपुर ताईं 60.9 किलोमीटर ऐं पंजों हिसो राणीपुर खां सखर ताईं 59.6 किलोमीटर ढिघो हूंदो। ब्रीफिंग मूजिबि पहिरियों ऐं ॿियों हिसो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत एशियाई तरक़ियाती बैंक जे सहकार सां तामीर कयो वेंदो, जॾहिं त टे हिसे जे लाइ ओपेक फंडिंग कई वेंदी। चोथे ऐं पंजे हिसे जे लाइ इस्लामी तरक़ियाती बैंक माली सहकार फराहम करे रही आहे। अमलदारनि ॿुधायो त कोशिशि आहे त सेप्टेंबर ताईं लाॻापियल ठीकनि ते सयूं थी वञनि। टे हिसे लाइ सलाहकारनि जी चूंड जे लाइ टेंडर जारी कया विया आहिनि, जॾहिं त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वारनि ॿिनि हिसनि लाइ एशियाई तरक़ियाती बैंक सां मुआहिदो फेबरवरी में थियण जो इम्कान आहे। ब्रीफिंग मुताबिक़ सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे जे लाइ मवासलात वारी वज़ारत PSDP में 70 अरब रुपया रखण जी सिफ़ारिश कई वई हुई, पर मनसूबे जे लाइ सिर्फ़ 30 अरब रुपयनि जी रक़म मुख़्तस कई वई आहे। आशूर जे ॾींहुं संगरार मां अगवा थियल मासूम न्याणी प्रिया कुमारी समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां गुम थियल मासूम ॿारनि जे बाज़ियाबी जे लाइ बबरलो बाईपास ते क़ाइमु एहतजाजी कैंप 8 ॾींहं बि जारी रही। एहतजाजी कैंप में सियासी ऐं समाजी अॻवाननि, वकीलनि, सहाफ़ियुनि ऐं शहरनि वॾे अंग में शिरकत करे गुम थियल ॿारनि जे वारसनि सां यकजहती जो इज़हार कयो। शिरकत कंदड़नि मुतालबो कयो त प्रिया कुमारी समेत सभिनी गुम थियल मासूम ॿारनि खे फौरी तौर ते बाज़ियाब करायो वञे। उन मौक़े ते पेटे अलफ सिंध जे अॻूणे सदर इनायत अली जमाली ऐं जनरल सेक्रेटरी एजाज़ चांडियो समेत ॿियनि अॻवाननि ऐं वारसनि चयो त खेनि हर वक़्तु हुकूमत ऐं पुलिस मां मायूसी मिली आहे, जंहिं सबबि हू मजबूर थी बबरलो बाईपास ते एहतजाजी कैंप क़ाइमु करण ते मजबूर थिया आहिनि। हिननि चयो त गुम थियल ॿारनि जी बाज़ियाबी जे लाइ रुॻो ऐलाननि बदिरां अमली क़दम खयां वञनि। वारसनि चिता ॾिनो त जेकॾहिं मासूम ॿारनि खे जल्द बाज़ियाब न करायो वियो त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो ऐं ईंदड़ मरहले में बबरलो क़ौमी शाहराह बंदि कयो वेंदो। तालीम खाते तरफ़ां सिंध जे सरकारी स्कूलनि में हिंदू शागिर्दनि जे लाइ सनातन धर्म वारो निसाब पढ़ाइण जे लाइ लेटर जारी कयो वियो आहे। तालीम खाते जे निसाब वारे सलाहकार फौजिया ख़ान तरफ़ां समूरनि डायरेक्टरनि ऐं DDOs खे उन सिलसिले में हिदायतूं जारी कयूं वियूं आहिनि। उन फ़ैसिले तहत 3 क्लास खां 5 क्लास ताईं जे हिंदू शागिर्दनि खे हाणे सनातन धर्म बाबति निसाब पढ़ायो वेंदो। उन क़दम जो मक़सदु अक़लियती शागिर्दनि खे उन्हनि जे मज़हबी तालीम फ़राहम करणु आहे। नेब टीम टंडो आदम पहुची वई, तरक़ियाती स्कीम जो जाइज़ो, आफ़ीसरनि में थरथलो मची वियो। उन ॾस में सिंध जे 12 ज़िलनि में पब्लिक हेल्थ एजुकेशन वर्क्स, रोडस, बिल्डिंग्स समेत मुख़्तलिफ़ खातनि जे अरबे रुपयनि जी स्कीमुनि में गोबियुनि जी हलंदड़ जांच जे सिलसिले में नेब टीम टंडो आदम पहुची वई। टंडो आदम भिटशा रोड समेत टंडो आदम तालुके जे मुख़्तलिफ़ रोडनि ऐं बिल्डिंग्स जो मुआइनो कयो। मालूम थियो आहे त नेब टीम सांगढ़ ज़िले में ऑयल एंड गैस जी रॉयल्टीअ मां साल 2012 खां 2018 दौरान थियल तरक़ियाती कमनि जो जाइज़ो वठंदी। नेब टीम पंहिंजे दौरे बाबति मक़ामी इंतिज़ामिया खे का आगाही नाहे ॾिनी। नेब टीम जे दौरे जो ॿुधी आफ़ीसरनि ऐं ठेकेदारनि में थरथलो मची वियो आहे। ॿिए तरफ़ नेब टीम कंहिं बि क़िस्म जा तफ़सील ॿुधाइण खां लवाए रही आहे। ज़रियनि मूजिबि नेब टीम सांगढ़ ज़िले जे 6 तालुकनि टंडो आदम, शहदादपुर, सांगढ़, ॼाम नवाज़ अली, सिंजोरो ऐं खिपरे में थियल मुख़्तलिफ़ तरक़ियाती स्कीमुनि जो जाइज़ो वठंदी ऐं उन आधार ते रिपोर्ट तयारु करे आला अख़्तियारनि खे वधीक कार्रवाई जे लाइ मोकिलींदी।
सखर आराई वेझो ट्रेन जे टकर में फोत थी वियल रिटायर्ड डीएसपी ऐं संदस भाउ वारो मामलो रेलवे इंतज़ामिया हादसे जे शिकार थियलनि खे ज़िमेवार करार ॾींदे मथां FIR दाख़िल करे छॾी। फोतुनि जे वारसनि पारां बि ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करण जो चिताउ ॾेई छॾियो। टे ॾींहं अॻु आराई भरिसां गणंगवाह वटि होजमालो ट्रेन जे बग़ैर फाटक जे रेलवे क्रॉसिंग खां गुज़रंदड़ कार खे टकर थियण जे नतीजे में रिटायर्ड डीएसपी दरिया ख़ान जतोई ऐं संदस भाउ आरिफ जतोई फोत थी विया हुआ, जॾहिं त ॿ ॼणा सख़्त ज़ख़्मी थी पिया हुआ, जिन मां हिकु ॼणे जी हालत हिन वक़्तु बि ॻणिती जोगी ॿुधाई पई वञे। रेलवे इंतज़ामी हादसे जी ज़िमेवार कार ड्राइवर खे करार ॾींदे होजमालो ट्रेन जे इंचार्ज गार्ड अब्दुल हक महर जी फरियाद ते आबाद थाणे ते केस दाख़िल कराए छॾियो। रेलवे थाणे सखर जे SHO ज़ाहिद अबड़ो खां FIR लाइ मिलियल लेटर थाणे ते पेश कयो। FIR जे मतन मुताबिक़ कार ड्राइवर गैर ज़िमेवारी, लापरवाही ऐं तेज़ रफ़्तारी सां कार हलाईंदे गोसड़ जी सखर रोड ते ट्रेन सां टकराइजी वियो। हादसे में ज़ख़्मी थियलनि खे इलाज जे लाइ अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। वाक़िए बाबति इतलाह मिलंदे ई कार्रवाई करे केस दाख़िल कयो वियो आहे। गाॾी ऐं ड्राइवर ख़िलाफ़ वधीक कानूनी कार्रवाई शुरू कई वई आहे। ॿिए तरफ़ फोतियुनि जे वारसनि मुताबिक़ रेलवे इंतज़ामिया असांजे ज़ख़्मनि ते लूणु बुरकियो आहे, नुक़सान बि असांजो थियो आहे ऐं रेलवे इंतज़ामिया पंहिंजी नाअहली लापरवाही लिकाइण जे लाइ FIR बि असां मथां दाख़िल कराई वई आहे। हिननि चयो त जॾहिं होजमालो ट्रेन हलाइण जे लाइ तयारी कई वई हुई तॾहिं रेलवे ऐं ज़िले कौंसिल खे खुलियल फाटक नज़र छो न आयो। हुननि चयो त हितां सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कामयाबु थियल आहे, उन जो पुट होजमालो ट्रेन हलाई हुई, फाटक न हुजण सबबि जानी नुक़सान थियो आहे, जंहिंजी ज़िमेवारी रेलवे इंतज़ामिया ऐं लाॻापियल अमलदारनि जी आहे। बिरादरीअ जे चङनि मुड़ुसनि सां मुशावरत बाद जल्द ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ क़ानूनी रस्तो इख़्तियार कयो वेंदो।

पेश है स्पेशल रिपोर्ट। 5 जुलाई पाकिस्तान के सियासी तारीख जो रुग एक आम डी न पर वो अड़ो मोड़ है जै मुल्क की जमहूरी सफर से गहरा असर छिया। 5 जुलाई 1977 से चूंडियल वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टे की हुकूमत जो तख्तो ऊंधो कयो वियो जैखा पोए पाकिस्तान की सियासी तारीख नए रुख इख्तियार कयो। उन वाक्य न रुगो एक चूंडियल हुकूमत जो खात्मो आंदो पर मुल्क के आइनी निज़ाम जमहूरी अर्तका इदारियाती इस्तेहकाम ते भी डिघे मुद्दे वारा वार छड़िया। तारीख शायद आए तो पाकिस्तान के क़याम का पोए मुल्क जो वो हिस्सों गैर जमहूरी तौरन फौजी हुकुमरानी सियासी मुदाखलतुन के वर चढ़ो है। जमहूरियत जहाँ मुख्तसर दौर भी घणन ही चैलेंजन रुकावटन से गुजरिया। चूंडियल इदारन के मुकम्मल इख्तियार घट मिलिया जडे तो इक्तदार जहाँ अहम मरकज घणों कर जमहूरी इदारन का बाहर रहा। नतीजे में जमहूरियत पांजे असल रूह मुताबिक मुकम्मल तौर मजबूत न थी सकी। सियासी मुबसरन जो ख्याल है तो मुल्क में मुख्तलिफ दौरन दौरान जमहूरियत जहाँ मुख्तलिफ नमूना मुतारफ़ कराया वह कदें सियासी इंजीनियरिंग जरिए नवा सियासी इतिहाद जोड़िया वह कदें महदूद जमहूरियत जहाँ तजुर्बा थे जडे तो जदीद दौर में भी मुख्तलिफ़ सियासी फार्मूलन से बहस जारी रो। उन तजुर्बन में मुल्क की सियासी इस्तेहकाम से गहरा असर छिया। हर दौर में आइन की तशरीह इस्तेमाल बाबत बहस भी जारी रो। मुख्तलिफ़ हुकुमरान इक़्तदार के तसलसल लाए कानूनी आइनी तब्दीलू आंदू जै सबब आइन के असल रूह कानून की हुकुमरानी बाबत सवाल उथंदा रहा। सियासी तजिया निगार चवण है तो जडे भी आइन इदार के असल किरदार के हटी कर कदम खाया वह मुल्क के सियासी समाजी बोरान का मुंह दियण पो है। मुल्क के सियासी तारीख से नजर विझे त केतरन ही तजुर्बन के कौमी मुफाद जो नालो दिनो वो पर उन असर घना भेरा सियासी बेचैनी मुआशी कमजोरी इदारियाती तकरारन की सूरत में सामू आया। अज भी सियासी हल्कन में उहाराय मौजूद है तो माजी में सबक सिखण जमहूरी रवायतुन के मजबूत करण वक्त की अहम जरूरत है। तजिया निगार मूजिब पाकिस्तान के मौजूदा हालतुन में कढ़ण के लिए मजबूत जमहूरी इदारा कानून की हुकुमरानी आज़ाद पार्लियामेंट अवाम के मैंडेट जो एहतराम जरूरी है। 5 जुलाई की तारीख के केतरा ही मानू रुगो एक सियासी वाक्य तौर न पर कौमी एहतसाब तारीख में सीखण जो डी तौर दिसन था।

0: इहो हिन वक़्त जो सिंध राउंड अप ॿिए आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।
1: जो शहर जो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8।